अति महसूर वरद विनायकाच तित एक मंदिर मंदिर लय साध सुध जस कौलारू घर घुमटा तकळ सोनेरी नक्षी नागाची

0: लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
1: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
0: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
1: एक काम करें, जब तक तुम यहाँ हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारे शॉल कहाँ?
0: भूल गई। ना ना,
1: तुम नहीं बदलोगी।

0: शरारती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देख, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा,
0: लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है।

आचार्य 90 एफएम के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं हमारे प्यारे ऑडियंस, ऑल गुड ना? भाई हमारा तो फर्ज है आपका हालचाल पूछना, क्योंकि आप हैं हमारे आचार्य 90 एफएम के खास दोस्त, और दोस्तों के साथ स्वाद का जायका निभाना हमें बखूबी आता है। हमारी आज की फर्स्ट रेसिपी का नाम है मोरिंगा सूप। मोरिंगा मींस मराठी में शेवगा। क्या आप जानते हैं सूप का इतिहास बहुत पुराना है। ये तब की बात है जब प्राचीन मानव ने पानी उबालने के बर्तन बनाने के बाद मांस, हड्डियां और पोषक तत्वों को निकालना शुरू किया था। हिंदी में और भारतीय संस्कृति में इसे शोरबा इस नाम से भी जाना जाता है। भारत में चरक संहिता जैसे ग्रंथों में दाल, जड़ी बूटियां और मसालों से बने यूश मींस शोरबा का जिक्र है। सूप शब्द यूरोपियन संस्कृति से आया है, जिसका मीनिंग ब्रेड को शोरबा में डुबोकर खाना था। दक्षिण भारत का पारंपरिक रसम ये भी इसी प्रकार का प्राचीन औषधीय और पाचक पेय है। दावत की शुरुआत में भूख को बढ़ाने के लिए या बीमार इंसान को एनर्जी मिले इस भावना से सूप परोसा जाता था। इसका हर चम्मच जीभ को स्वाद और मन को संतुष्टि ही देता है। तभी तो रेस्टोरेंट के स्टार्टर से लेकर इंस्टेंट फूड वाले पैकेट में भी सूप मिल जाता है। वैसे सूप के कई सारे फ्लेवर्स हैं। ये एक फेमस व्यंजन है, तभी तो इसके कई सारे फ्लेवर्स भी होने ही चाहिए। वेज और नॉन वेज इन दोनों प्रकारों में सूप की अपनी एक अलग सी पहचान है। मोस्टली स्वीट कॉर्न वेज सूप, मंचाव सूप, क्रीम ऑफ टमेटो सूप, पालक सूप, ऐसी कई सारी वैरायटीज तो ऑलरेडी फेमस है और ये सब एकदम कॉमन है। हमारे आचार्य 90 एफएम के प्यारे ऑडियंस के लिए आज हम बनाने वाले हैं हेल्दी टाइप वाला मोरिंगा सूप। वैसे मोरिंगा या सहजन, जिसे ड्रमस्टिक्स भी कहा जाता है, इसका सूप बनाना एकदम आसान है। सर्दी हो या गर्मी, मोरिंगा सूप हर सीजन में हमारे पेट और हेल्थ के लिए अच्छा ही होता है, क्योंकि मोरिंगा एक सुपर फूड है। इसलिए अपनी ब्यूटी रेजिम में आप मोरिंगा को जरूर शामिल कीजिए। अब चलिए हम मोरिंगा सूप की रेसिपी की ओर बढ़ते हैं। मोरिंगा सूप बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स। मोरिंगा मींस ड्रमस्टिक्स 5-6, बड़ा टमाटर 1, छोटा प्याज 1, अदरक लगभग 1 इंच, लहसुन 4 कली, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, साबुत जीरा आधा चम्मच, देसी घी 1 चम्मच, काली मिर्च मींस ब्लैक पेपर 3 या 4, बारीक कटा हुआ हरा धनिया 4 चम्मच, नींबू लगभग आधा, नमक स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं लगभग आधा चम्मच नमक ले रही हूँ, और हमें चाहिए ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली है। रेसिपी को सुनने से पहले हम थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। सारे ड्रमस्टिक्स को अच्छे से धो लेना है, फिर उसे 3-4 इंच के टुकड़ों में काट लेना है। उसके बाद हम प्याज और टमाटर के टुकड़े कर लेंगे, फिर अदरक और लहसुन को छील कर उसको भी बारीक टुकड़ों में काट लेना है। काली मिर्च को कूट कर उसका पाउडर बना लेना है। जीरा को भी हम कूट लेंगे। अब हम लेंगे मोटे बेस वाला एक पैन या कढ़ाई, उसमें हम डालेंगे लगभग 5 बड़े ग्लास भर के पानी। फिर हम उसमें डालेंगे मोरिंगा और टमाटर, उसके साथ हम प्याज, अदरक और लहसुन को भी ऐड कर देंगे। अब हल्दी और नमक मिलाकर हम इसे पका लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर प्रेशर कुकर का यूज कर सकते हैं। इतना काम करके मैं तो थक गई भाई साहब, आई नीड अ ब्रेक।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य नाइटी एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। कढ़ाई वाले मिश्रण को हमें लगभग 20-25 मिनट तक अच्छे से पका लेना है। इस दौरान आप इसे चलाते रहिए। ऐसा करने से ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। थोड़ी देर बाद ये मिश्रण थोड़ा गाढ़ा टाइप बन जाएगा। तब हम गैस को बंद कर देंगे। उसके बाद इस मिश्रण को एक छलनी की मदद से छान लेना है। हमें उसके पानी को सब्जियों से अलग कर लेना है। उसके बाद सभी सब्जियों को मैशर से दबा लीजिए। फिर मिक्सर में उस सॉलिड वाले मिश्रण को पीस लेना है। ऐसा करते समय उसमें लगभग एक कटोरी भर के पानी हम ऐड करेंगे। फिर इस पेस्ट को भी छलनी की मदद से छान लेना है। एक चम्मच की मदद से इस पेस्ट को दबाकर इसका सॉलिड और लिक्विड पार्ट हम सेपरेट कर देंगे। अब लिक्विड पार्ट को साइड में रखे सब्जियों के पानी में मिक्स करना है। फिर इस तैयार शोरबा में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और ढेर सारा प्याज। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और बातें होंगी। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य नाइटी एफएम और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हमारा मोरिंगा सूप अब बस तैयार हो रहा है और हम अब लेंगे एक तड़का पैन। उसमें हम गरम करेंगे थोड़ा सा देसी घी। उस देसी घी में हम डालेंगे लगभग एक चुटकी भर के जीरा। फिर इस तड़के को हम तैयार शोरबा पर डाल देंगे। भाई वाह, क्या महक। अब इसे हम निकालेंगे सुंदर से एक सर्विंग बोल में। फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नींबू का रस। इसकी सुंदरता को और बढ़ाने के लिए हम इस पर डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। भाई वाह, मजा आ गया। अब एकदम आराम से बैठकर अपनों के साथ मिल बांटकर इस मोरिंगा सूप का लुत्फ आप मजे से उठा सकते हैं। आप चाहें तो इसके साथ रोस्टेड पापड़ भी परोस सकते हैं। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 एफएम और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। मोरिंगा सूप तो हमने बना लिया। वैसे बारिश के मौसम में मोरिंगा तो एकदम आसानी से मिल जाता है। मोरिंगा को पराठा, दाल, सब्जियां या सिर्फ बॉईल करके भी खाया जाता है। वैसे देखा जाए तो इसे पकाकर, चबा चबा कर खाना ज्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन खाने की चीजों का फॉर्म बदल कर उसे पेश करना, इसे ही तो कहते हैं स्वाद का जायका निभाना। ऑडियंस जी, एम आई राइट? इस मोरिंगा सूप की तारीफ में पेश है एक कविता। कविता का नाम है हेल्दी मोरिंगा सूप। निखारने के लिए अपना रूप, इसमें नहीं है कोई अनाज, मोरिंगा टमाटर और थोड़ा सा प्याज। स्वाद को बढ़ाने डाला ब्लैक पेपर, इसे डालते ही टेस्ट हुआ बेटर। सब्जियों को उबालकर बनाया पेस्ट, निचोड़कर उसको फेंक दिया वेस्ट। मोरिंगा का सूप है एकदम देसी, ओरिजिनली शोरबा और सूप विदेशी। अपनों के संग शेयर करेंगे खाना, आचार्य 90 एफएम पर मन चाहा गाना। खाने और गाने की जब हो जुगलबंदी, एंटरटेनमेंट के लिए भाई नो पाबंदी। खाने और गाने का इस शो पर मेल, मोरिंगा सूप में नहीं है तेल। इंद्रधनुष में मिले बारिश और धूप, बनाइए मोरिंगा सूप और फिर निखरेगा रूप। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 एफएम और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हमारा मोरिंगा सूप तो बन गया। अब हम बढ़ते हैं अगली रेसिपी की ओर। भाई, गणेश जी का फेवरेट खाना कौन सा है और बच्चों को खाने में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? जनाब, गणेश जी का फेवरेट खाना है मोदक और बच्चा पार्टी का फेवरेट होता है चॉकलेट। चॉकलेट और मोदक को एक साथ मिलाकर बनता है चॉकलेट मोदक।
गणेश जी का आगमन हम सबके लिए खुशियों वाला माहौल बनाता है, है कि नहीं? वैसे मोदक तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे उकड़ी से मोदक, तलेले मोदक, ड्राई फ्रूट्स मोदक वगैरह वगैरह। लेकिन हमारे आचार्य 90 एफएम के प्यारे ऑडियंस के लिए हम बनाने वाले हैं चॉकलेट मोदक। क्या आप मोदक इस शब्द का अर्थ जानते हैं? मोदक शब्द की खोज संस्कृत के मोद इस शब्द से हुई है। मोद मींस खुशी, आनंद या प्रसन्नता, ये होता है। मोद मींस खुशी, आनंद या प्रसन्नता, ये बेसिकली महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व में मोदक का भोग भगवान गणेश जी को लगाया ही जाता है। मोदक का मतलब है आनंद लेना, मींस एंजॉय कीजिए। मोदक को हिंदी में लड्डू के नाम से जाना जाता है। वैसे लड्डू मींस गोल मटोल मिठाई और मोदक मींस मुकुट की तरह दिखने वाली मिठाई। चावल या गेहूं के आटे में गुड़ और नारियल का मिश्रण, जिसे मराठी में सारण कहा जाता है, वो भर दिया जाता है। फिर उसे भाप पे पकाकर या डीप फ्राई करके परोसा जाता है। 5, 21, 51, 101 या 108 मोदक बनाकर भगवान श्री गणेश जी को इसका भोग बड़े प्यार से लगाया जाता है। चलिए अब हम चॉकलेट मोदक बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। इसके लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स, सूखा नारियल मींस, या तो फिर आप ले सकते हैं डेसिकेटेड कोकोनट 2 कटोरी, मिल्क पाउडर 2 कटोरी, दूध 1 लीटर, चीनी 1/2 कटोरी, चॉकलेट पाउडर 1 कटोरी, देसी घी 1 या 2 चम्मच, मिल्क मसाला 2 चम्मच या फिर मिक्स ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, बादाम, पिस्ता सब 2-2। दैट्स इट। अब हम चॉकलेट मोदक की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे मोटे बेस वाला एक पैन। उस पैन में हम दूध और मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसे लो फ्लेम पर पकाना है। इसे चम्मच से चलाते हुए लगभग 20 मिनट तक पका लेना है। थोड़ी देर बाद उस कढ़ाई में तैयार होगा इंस्टेंट खोया मींस मावा। उसे हम निकालेंगे एक प्लेट में।

हम लेंगे एक पैन, उस पैन में हम नारियल को हल्का सा भून लेंगे। अब हम शक्कर को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हमारे इंस्टेंट मावा में हम ऐड करेंगे शक्कर का पाउडर और चॉकलेट पाउडर। अपने हाथों से आप इसे मिक्स कीजिए। उसके बाद हम इस मिश्रण में ऐड करेंगे रोस्टेड नारियल। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। भाई, हमारे चॉकलेट मोदक का मिश्रण अब तैयार हो गया है। अब हम सारे ड्राई फ्रूट्स को बारीक टुकड़ों में काट लेते हैं। उसके बाद हमें लेना है मोदक का मोल्ड। उस मोल्ड को अंदर की तरफ हम लगाएंगे थोड़ा सा देसी घी। इससे हमारे मोदक में हल्की सी शाइन आ जाएगी। फिर हम उसमें भरेंगे तैयार मिश्रण। इसे अच्छे से दबाकर भरना है। अब तैयार मोदक को उस मोल्ड से बाहर निकालिए। इस स्टेप को आप रिपीट करते रहिए। इस तरह से हम सारे मिश्रण के मोदक बना लेंगे। वाह वाह, क्या बात! अब हम इसे डेकोरेट करते हैं। इसके लिए हम लेंगे एक सुंदर सी प्लेट। उस प्लेट में बड़ी श्रद्धा से हम रखेंगे सारे चॉकलेट मोदक। फिर उसके ऊपर हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स के टुकड़े या मिल्क मसाला। वाह वाह, एकदम जबरदस्त डेकोरेशन है। उसके बाद एकदम सात्विक भाव से हम भगवान श्री गणेश को इस चॉकलेट मोदक का भोग लगाएंगे। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त RJ भारतीय सीमा। इस चॉकलेट मोदक की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है चॉकलेट वाले मोदक। आ गए गणेश जी, चलो करें स्वागत। अब मोदक बनाने की डाल ही लो आदत। खोया के मिश्रण को हमने बनाया स्वीट। गणपति बाप्पा को मोदक की ट्रीट। विघ्नहर्ता का रूप हमारे प्यारे गणेश। ज्ञान और प्रगति का देते हैं संदेश। गणेश चतुर्थी की पावन तिथि बाप्पा के साथ। गणेश चतुर्थी की पावन तिथि बाप्पा के साथ रिद्धि और सिद्धि। बाप्पा के लिए मूषक की सवारी। चॉकलेट मोदक बनाने की हमने की जोरदार तैयारी। नमन है तुम्हें हे विघ्नहर्ता। तुम ही हो हमारे दुखों के हर्ता। मोदक को खाकर बाप्पा होंगे प्रसन्न। हमारा भारत देश विविधता से संपन्न। खुशियों से भरा बाप्पा का आगमन। खूबसूरत फूलों से महका ये चमन। साथ मिलकर करेंगे जब गणेश जी की आरती। तब जरूर प्रसन्न होगी हमारी माँ भारती। संस्कृति और संस्कारों का अनोखा ये संगम। पापा के स्वागत में बजी सुरीली सी सरगम। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त RJ भारतीय सीमा। अब हम सुनते हैं एक क्विक रिकैप। आज के एपिसोड में हमने सबसे पहले बनाया एक हेल्दी वाला सूप। ड्रम स्टिक्स को टमाटर, प्याज, अदरक और लहसुन के साथ हमने उबाला। फिर उसमें नमक, काली मिर्च डालकर देसी घी वाला छौंक लगाया। इस हेल्दी सूप को धनिया और नींबू के रस के साथ हमने फाइनल टच दिया। फिर रोस्टेड पापड़ के साथ इसे परोसकर हमने अपने दोस्तों की सेहत का खास ख्याल रखा। ऑडियंस जी, रखा के नहीं जी, बिल्कुल रखा। फिर हमने बनाया चॉकलेट मोदक। भगवान गणेश के स्वागत में हमने बच्चा पार्टी स्पेशल चॉकलेट मोदक को बड़े प्यार से बना ही दिया। इंस्टेंट खोया, डेसिकेटेड कोकोनट, चॉकलेट पाउडर, इन सबको शक्कर के साथ मिलाकर हमने मोल्ड में डाला। फिर ड्राई फ्रूट्स के साथ उसे डेकोरेट भी किया। इस प्रकार हमने बाप्पा के लिए हमारी तरफ से एक छोटी सी सेवा प्रस्तुत की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का शो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज हैं, तो हमें जरूर बताइए। और अगर आपको अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना है तो वो भी हमें बताइए।
अच्छा खाना खाइए और आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। लेकिन लेकिन लेकिन उसके पहले आप हमारे आचार्य 90 FM चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी दोस्ती एकदम पक्की हो जाएगी। चलिए अब समय हो गया है आप सबसे विदा लेने का। वापस मिलने का ये मेरा वादा, सिर्फ वादा नहीं एकदम पक्का वादा। तब तक आप अपना और अपनों का खास ख्याल रखिए। आरजे भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

0: हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। आज हम इस कहानियों की गुल्लक में एक कहानी और डालेंगे और इस कहानियों की गुल्लक को फिर से ज्यादा और भारी करेंगे। आज की कहानी है चार दोस्तों की, चार यार एक दोस्ती जो कभी टूटी नहीं। मुंबई की बारिश का एक अलग ही मूड होता है, कभी रोमांटिक, कभी डिप्रेसिंग और कभी कभी जिंदगी बदल देने वाली। ये कहानी है चार दोस्तों की, आरव, समीर, फैजान और कबीर। चार अलग पर्सनालिटीज, चार अलग सपने, लेकिन एक चीज कॉमन थी, उनकी दोस्ती। वो दोस्ती जो स्कूल के एक ब्रोकन बेंच से शुरू हुई और जिंदगी के सबसे बड़े तूफान तक साथ चली। मुंबई के गवर्नमेंट स्कूल का क्लासरूम, टीचर अटेंडेंस ले रही थी। समीर खान प्रेजेंट मैम, कबीर शर्मा प्रेजेंट मैम, आरव मेहता प्रेजेंट मैम, फैजान अली प्रेजेंट। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ये चार नाम एक दिन एक दूसरे की जिंदगी बन जाएंगे। लंच ब्रेक में एक इंसिडेंट हुआ, एक सीनियर बच्चा फैजान का टिफिन ले गया और मजाक उड़ाने लगा, अरे देख बिरयानी वाला आ गया है। पूरा क्लास हंस रहा था, फैजान चुप था। तभी आरव खड़ा हुआ, भाई टिफिन वापस दे दे। सीनियर साहब तू क्या करेगा? आरव ने सीधा उसके हाथ से टिफिन खींच लिया। उस दिन पहली बार समीर और कबीर ने आरव को देखा और समझा कि ये लड़का अलग है। उसके बाद चारों एक बेंच पे बैठने लगे। स्कूल के बाद कटिंग चाय, क्रिकेट, असाइनमेंट्स, मास्क बंक, पनिशमेंट सब साथ में, और धीरे धीरे दोस्ती फैमिली बन गई। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं, वक्त बदलता है और वक्त को बदलने में देर नहीं लगती, तो ठीक वैसा इन चारों दोस्तों के साथ भी हुआ। स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज स्टार्ट हुआ, लेकिन हर किसी का स्ट्रगल अलग था। आरव मिडिल क्लास फैमिली से था, फादर ऑटो चलाते थे। आरव का सपना था फिल्म मेकर बनने का, लेकिन घर वालों को लगता था फिल्म लाइन में फ्यूचर नहीं है। समीर ब्रिलियंट कोडर, कंप्यूटर का मैजिशियन, लेकिन फाइनेंशियली वीक। कभी कभी इंटरनेट रिचार्ज करने के भी पैसे नहीं होते थे उसके पास। कबीर बड़ा फनी बंदा था, हर सिचुएशन में जोक मार देता लेकिन अंदर से ब्रोकन। उसके पेरेंट्स रोज फाइट जो करते थे, वो बस हंस के सब हाइड करता था। फैजान सिंगर बनना चाहता था, आवाज दिल को छू लेती थी, लेकिन उसके अब्बू चाहते थे कि वो उनकी गैरेज शॉप संभाले। गाने से घर नहीं चलता, ये सेंटेंस उसने हजार बार सुना था। एक रात चारों मरीन ड्राइव पर बैठे थे, बारिश हो रही थी। कबीर बोला, एक प्रॉमिस करते हैं, जब भी लाइफ में कितना भी बड़ा स्ट्रगल आए हम साथ रहेंगे। सबने हैंड्स स्टैक किए, फॉरएवर। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि असली टेस्ट अभी बाकी है। कॉलेज के फाइनल ईयर में आरव को एक आइडिया आया, व्हाई डोंट वी स्टार्ट आवर ओन कंटेंट चैनल, शॉर्ट फिल्म्स, म्यूजिक वीडियोस, सोशल मीडिया कंटेंट। समीर टेक्निकल संभाल लेगा, फैजान म्यूजिक संभाल लेगा, कबीर एक्टिंग और स्क्रिप्टिंग कर लेगा, आरव डायरेक्शन। सब एक्साइटेड थे, लेकिन प्रॉब्लम एक थी, पैसे, कैमरा रेंट, लैपटॉप, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ट्रैवल, सब कुछ एक्सपेंसिव था। फिर भी उन्होंने गिव अप नहीं किया। दिन में कॉलेज, रात में काम, दिन में कॉलेज, रात में काम, दिन में कॉलेज, रात में काम। कभी कभी रेलवे स्टेशन पे शूट, कभी स्लम एरिया में, कभी टेरेस पे। उनका पहला वीडियो सिर्फ 312 व्यूज ले पाया, दूसरा 89 और तीसरा तो पूछो ही मत, ओनली 41। कबीर फ्रस्ट्रेटेड हो गया, भाई ये नहीं चलेगा यार। लेकिन आरव बोला, एक दिन चलेगा। फैजान चुप था, उसके घर पे प्रेशर बढ़ रहा था। अब्बू रोज बोलते थे गैरेज ज्वाइन कर ले, लेकिन वो सपना नहीं छोड़ना चाहता था। एक दिन समीर एक कैफे में फ्रीलांस कोडिंग का काम कर रहा था, तभी एक आदमी उसके पास आया, सूट पहना हुआ, एक्सपेंसिव वॉच। तुम समीर हो? हाँ, मैं समीर हूं। तुम्हारी कोडिंग स्किल्स के बारे में बहुत कुछ सुना है। उस आदमी का नाम था विक्रम मल्होत्रा, एक बिजनेसमैन। उसने ऑफर दिया, एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट करना है, काम सिंपल है, और उसके तुम्हें मिलेंगे 5 लाख रुपए। 5 लाख चारों के लिए एक काफी ह्यूज अमाउंट था। विदाउट थिंकिंग डीपली उन्होंने प्रोजेक्ट ले लिया। 3 महीने तक नॉनस्टॉप काम हुआ, नो स्लीप, नो पार्टीज, नो फन, बस काम। प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, पेमेंट भी मिल गई, सब खुश थे। लेकिन एक वीक बाद पुलिस समीर के घर पहुंची।
1: अकेले अकेले

स्वागत है दोस्तों आप सभी का ब्रेक के बाद आचार्य 90 FM में। जैसे कि हम सुन रहे थे, चार दोस्त, चारों का एक सपना। एक सपना वो ऐसा लिए आए थे कि एक YouTube चैनल बनाते हैं, उसमें शॉर्ट फिल्म्स, म्यूजिक वीडियोस, कंटेंट क्रिएशन, बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में चल रही थी। उन्होंने एक यूट्यूब चैनल भी खोला, लेकिन उनका चैनल बहुत तड़ाक से नीचे गिर चुका। पहला वीडियो 312, दूसरा वीडियो 89 और तीसरे का तो हाल मत पूछो, 41 व्यूज। लेकिन एक जिद थी कि कुछ करना है, तो एक ऑफर मिला जिसमें एक सॉफ्टवेयर बनाना था प्रोजेक्ट, वो बना लिया, उससे 5 लाख रुपए भी कमा लिए। लेकिन पुलिस आ गई थी अब समीर के घर, तो देखते आगे कहानी में क्या होता है। पुलिस समीर के घर पहुंची। समीर खान, हाँ, तुम्हें साइबर केस में अरेस्ट किया जाता है। सब शॉक, क्या तुम्हें साइबर फ्रॉड केस में अरेस्ट किया जा रहा है? जो सॉफ्टवेयर तुमने बनाया था वो इलीगल फाइनेंशियल स्कैम में यूज हुआ है। समीर, फैजान, कबीर, आरव, सब शॉक। विक्रांत ने उन्हें पॉन की तरह यूज किया था। न्यूज चैनल्स पे नाम आ गया, कॉलेज स्टूडेंट्स इन्वॉल्व इन फ्रॉड। फैजान के अब्बू ने थप्पड़ मारा, यही कर रहा है तुम? कबीर के पेरेंट्स ने उसे घर से निकाल दिया। आरव के फादर की तबीयत खराब हो गई स्ट्रेस में। सब टूट गया एक गलती से और पूरी जिंदगी उलट गई, जैसे मानो कभी कुछ था ही नहीं। सब एक पल में उथल पुथल हो गया। चारों दोस्तों की जिंदगी रास्ते पर आ गई थी। समीर जेल में चला गया, उसकी आंखों में गिल्ट था, वो खुद को कोस रहा था, सब मेरी वजह से हुआ, मैंने सब गलत कर दिया, मुझे वो ऑफर लेना ही नहीं चाहिए था। तब आरव बोला, नहीं भाई, हम सब साथ थे। कबीर पहली बार सीरियस था, अब क्या करेंगे? कोई आंसर नहीं था। 3 दिन तक सब होपलेस रहे, फिर एक अनएक्सपेक्टेड कॉल आया, अननोन नंबर, और उस कॉल पे कहा गया, तुम लोगों को फंसाया गया है। वॉइस फीमेल की थी। मैं विक्रांत की एक्स इंप्लॉय हूं, मेरे पास प्रूफ है। सब शॉक थे। उस एक लड़की का नाम था नैना, वो विक्रांत के इलीगल ऑपरेशंस जानती थी, लेकिन वो डर के मारे चुप थी। अब फाइनली वो इन चारों को हेल्प करना चाहती थी। नैना ने बताया, विक्रांत के ऑफिस सर्वर में सब एविडेंस है। समीर बोला, अगर वो डेटा मिल गया तो मैं इनोसेंट टू हो सकता हूं। प्रॉब्लम, सर्वर हेविली सिक्योर था और विक्रांत डेंजरस आदमी था, लेकिन अब उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा था। अगर समीर को खुद को इनोसेंट प्रूफ करना है तो उसको एविडेंस की जरूरत थी। एक रात चारों सीक्रेटली विक्रांत के ओल्ड वेयर हाउस पे गए। रेनी नाइट, डार्क बिल्डिंग, हार्ट बीट फास्ट। कबीर नर्वस था, भाई अगर पकड़े गए तो? फैजान बोला, तो साथ पकड़े जाएंगे। ये लाइन सुनकर सब मुस्कुरा गए। अब वेयरहाउस पे एकदम काला अंधेरा, सिक्योरिटी टाइट, जगह जगह पे वॉचमैन घूम रहे हैं, लेकिन समीर को इनोसेंट प्रूफ करना था तो ये कदम उनको बढ़ाना ही था। और ये जो सिचुएशन थी इसे फेस करना ही था,
तो चारों ने डिसाइड किया कि भले कुछ भी हो जाए, कुछ भी, अब वो इस मिशन से पीछे नहीं हटेंगे और समीर को इनोसेंट प्रूफ करके रहेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे एक दोस्त अगर फंस जाता है तो उसके तीन दोस्त उसे इनोसेंट प्रूफ करने के लिए अपनी जान का जोखिम तक ले लेते हैं। अब इसके आगे वाली कहानी का हिस्सा हम सुनेंगे ब्रेक के बाद।

ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आचार्य 90 एफएम में। आप सुन रहे थे कहानियों के गुल्लक, जिसमें हम सुना रहे थे चार दोस्तों की कहानी। चार दोस्त अभी विक्रम के ओल्ड वेयरहाउस पे पहुंच चुके थे, लेकिन अंदर ऑफिस में जाने का कोई रास्ता नहीं था। और जाकर ये पता चला कि सारी चीजें वहां पे एकदम सिक्योरिटी पर्पस से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो वो वापस आ गए। वापस आने के बाद उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। तो वापस आने के बाद सबसे पहले उन्होंने बनाया एक प्लान कि रात में किस तरीके से विक्रम के पुराने ऑफिस में जाएंगे, समीर किस तरीके से सिस्टम हैक करने लगेगा और कौन क्या क्या काम करेगा। तो चलिए अब सुनते हैं आगे की कहानी। चारों विक्रम के ओल्ड वेयर हाउस में पहुंच चुके थे। सबने डिसाइड किया था अपना अपना टास्क, सबको क्या करना है, और अपने टास्क के मुताबिक काम शुरू हुआ। समीर सिक्योरिटी सिस्टम हैक कर रहा था। आरव कैमरास देख रहा था। कबीर गार्ड डिस्ट्रैक्ट कर रहा था फनी एक्टिंग से। फैजान बेसमेंट में फाइल सर्च कर रहा था। सब परफेक्टली चल रहा था, तभी अलार्म बज गया। रन रन रन, गार्ड्स उनके पीछे भागने लगे। कबीर गिर गया। एक गार्ड उसके पास पहुंच गया, लेकिन वापस आरव आ गया। उसे हाथ मत लगाना। फाइट स्टार्ट हो गई। फैजान ने कबीर को उठाया। समीर चिल्लाया, डाटा मिल गया। लेकिन एग्जिट ब्लॉक था, सब कॉर्नर ब्लॉक हो गए थे। उस वक्त कबीर हंसा और बहुत जोर से हंसा। आरव गुस्सा हुआ, पागल है क्या तू? कबीर बोला, भाई स्कूल में प्रॉमिस किया था ना साथ रहेंगे। उस मोमेंट पे उन्हें डर से ज्यादा एक दूसरे पे ट्रस्ट था। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं, हम हमारे स्कूल में किए हुए प्रॉमिस को कितना ज्यादा महत्व देते हैं या कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं। ये एक उसी की कहानी चल रही थी। अब दौड़ भागकर वो वहां से निकल पड़े। फाइनली नैना से ये चारों मिले। नैना ने सीक्रेटली पुलिस को सारे एविडेंस भेज दिए। विक्रम अरेस्ट हो गया। न्यूज चैनल की हेडलाइन बदल गई, यंग स्टूडेंट फ्रेम्ड बाय बिजनेसमैन। समीर फ्री हो गया, चार्जेस ड्रॉप हो गए, लेकिन इमोशनल डैमेज अब भी था। सोसाइटी स्टिल जज देम। लोग विस्पर करते हैं ये वही फ्रॉड वाले लड़के हैं। कबीर डिप्रेस होने लगा था। फैजान ने सिंगिंग छोड़ दी थी। आरव शांत हो गया था। सब फिजिकली फ्री तो थे, लेकिन मेंटली ब्रोकन थे। और फिर एक दिन आरव ने ओल्ड हार्ड ड्राइव निकाला। उसमें उनके पुराने वीडियोस थे, मस्ती, लाफ्टर, ड्रीम्स। कबीर स्लोली स्माइल करने लगा। फैजान की आंखों में टीयर्स आ गए। आरव बोला, हमने गलती की, लेकिन क्राइम नहीं। हम गिर गए, लेकिन खत्म नहीं हुए। समीर ने पूछा, अब क्या? आरव ने स्माइल किया और कहा, अब कम बैक। चारों ने फिर से कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, लेकिन इस बार फेक ग्लैमर नहीं, रियल स्टोरीज। लोगों के स्ट्रगल्स पर, लोगों की मेंटल हेल्थ पर, फ्रेंडशिप पर, फेलियर पर। उनका कंटेंट अब उनसे ज्यादा लोगों से जुड़ा हुआ था, लोगों की जिंदगी को बताने के लिए जुड़ा हुआ था। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को अब वो कैमरा में कैद करने लगे थे, उनकी कहानियों को लोगों के सामने लाने लगे थे। उनका एक पॉडकास्ट इसी तरीके से वायरल हो गया, When Life Frames You, Million of Views। लोग कनेक्ट करने लगे, कमेंट्स भर गए, भाई ये तो मेरी स्टोरी है, रियल फ्रेंडशिप स्टिल एग्जिस्ट, यू गाइस सेव्ड मी। स्लोली स्लोली सब चेंज होने लगा। फैजान का म्यूजिक फेमस होने लगा। समीर को स्टार्टअप जॉब मिली। कबीर स्टैंड अप कॉमेडी करने लगा। आरव डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बन गया। 10 साल बाद सेम मरीन ड्राइव, सेम बारिश, बस चेहरे मैच्योर हो गए थे। कबीर चाय सिप करते हुए बोला, भाई अगर उस टाइम हम टूट जाते ना तो आज कुछ नहीं होता। फैजान स्माइल्ड,
हम प्रॉब्लम में इसलिए नहीं फंसे क्योंकि हम वीक नहीं थे, हम फंसे क्योंकि हम इनएक्सपीरियंस थे। समीर एडिट, लेकिन निकले क्योंकि हम यूनाइटेड थे। आरव ने आसमान की तरफ देखते हुए बोला, दोस्ती का मतलब सिर्फ पार्टी नहीं होती दोस्तों, दोस्ती का मतलब होता है जब पूरी दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट हो तब भी कोई तुम्हारे साथ खड़ा रहे। बारिश तेज हो गई, चारों फ्रेंड समंदर के सामने खड़े थे और उनकी फ्रेंडशिप थी, हर लहर से ज्यादा स्ट्रांग थी उनकी फ्रेंडशिप। कई बार जिंदगी आपको गलत रास्तों पे ढकेल देती है, लेकिन अगर आपके पास सच्चे दोस्त तो हर अंधेरा छूटने लगता है, हर अंधेरा मिटने लगता है, एक नया सवेरा जरूर आता है, एक नई जिंदगी लेकर, एक नई उम्मीद लेकर, एक नई कहानी लेकर, एक नया दिन लेकर। और वो नई उम्मीद, वो नई किरण हमारी जिंदगी में कब इतनी बड़ी विक्ट्री दे जाती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो वक्त मुश्किल वक्त में साथ नहीं छोड़ते वही दोस्त होते हैं, जो तुम्हें, जो तुम्हारे आंसू आने पर तुम्हें हंसाने लगे वही दोस्त होते हैं, जो तुम्हारे साथ चलते हैं वही दोस्त होते हैं, जो तुम्हारे सपने को अपना सपना समझते हैं वही दोस्त होते हैं, जो गिरने पर सर पे टपली मार के उठाए वही दोस्त होते हैं, जो बेवजह बिन बात मजाक उड़ाए वही दोस्त होते हैं। सो ऐसी दोस्तों की सुन रहे थे हम कहानी, और इस कहानी में हमने देखा कि मुसीबत कितनी बड़ी क्यों ना हो पर एक साथ रहकर हर मुसीबत से लड़ा जा सकता है, हर मुसीबत पे काबू पाया जा सकता है, हर बुरे इंसान को हराया जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा साथ में रहना, हमारा हमारे दोस्तों को सपोर्ट करना, दोस्तों के साथ खड़े रहना। तो आज की कहानियों की गुल्लक में बस इतना ही, हम दोबारा फिर मिलेंगे आचार्य 90 FM पर, तब तक सुनते रहिए कहानियों की गुल्लक। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आपसे विदा लेता हूँ, बाय बाय।

0: वाह
1: बहुत सुंदर, बहुत प्रभावशाली। एक संगीत के जादू तो हम जानते ही हैं, संगीत का गरिमा क्या होता है इसके बारे में हम सब जानते हैं। संगीत से सुबह होती है, संगीत से शाम होती है, संगीत से हमारा जीवन एक परिपूर्ण होता है। तो फ्रेंड्स, टुडे इन आचार्य कॉलेज वी हैव मिसेस सुनीता गंगरडे मैम। मैम, वेलकम टू आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो एंड वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू हियर। Ma'am has done her faculty at, she is in faculty of Maya Somaiya School of Music and Performing Arts, Somaiya Vidyavihar University. She is an eminent classical and semi-classical vocalist. She has achieved gold medal in MA in vocal Indian classical music, and she is disciple of Vidushi Apurva Gokhaleji and Pandit Kiran Phatak and Vidushi Dhanashri Pandit Rai. She is a recipient of former President Dr. Shankar Dayal Sharma Award, Lata Mangeshkar Alankaran Award winner, and awarded a gold medal in memory of Sri R.C. Jal. Performed in International Storytelling Program Gatha in 2023, performed in Indo-Hungarian Program in 2024, and performed in Sri Lankan Program in 2025. She has published 2 papers in international peer-reviewed journals in 2023 and 24. She has been the judge at ZTV Little Champs and awarded a gold medal by Devi Ahila University in memory of Sri Rabindranath Tagore Janma Shatabdi Mahotsav. She is an active classical music-based YouTuber with 100 plus videos and 4,000 subscribers. Awarded Guru Gaurav Puraskar by Art and Bits Foundation Pune in 2024 and awarded by Sangeet Kala Samman by Akhil Bhatiya Shri Gangade Samaj Mahila Mandal Khandwa at 9th March 2025. So she was invited to our Acharya Marathi College for end of musical therapy. She has beautifully hosted the program and all were obliged by that. So today we have as a guest speaker over here. So ma'am, थोड़ा पहले के थोड़ा पीछे जाते हैं और जानते हैं आपका, आप खंडवा से है, मध्य प्रदेश से है, मध्य प्रदेश से तो मिठाई बहुत पसंद है हमें, और दूसरी चीज है मध्य प्रदेश की साड़ी। एक मध्य प्रदेश का अपने एक अलग सा कल्चर है जहाँ पे आप फूली फली बड़ी हो गई, तो थोड़े उसके बारे में, आपका घर कैसा था, आपके माता पिता के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए।
2: जरूर जरूर तेजस्विनी जी, सबसे पहले तो आपने मुझे इन्वाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं, मुझे गर्व होता है कि मैं खंडवा, मेरी भूमि खंडवा है, जहाँ के किशोर कुमार जी हैं, जगत विख्यात जिनका नाम है। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं ऐसी नगरी से हूँ जहाँ से इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट निकले हैं। तो मध्य प्रदेश जो है उसको तो भारत का हृदय कहा जाता है, और संगीत के लिए मुझे लगता है बहुत ही अच्छा स्कोप है वहाँ पर। पंडित कुमार गंधर्व जी मध्य प्रदेश से ही हैं, और खंडवा में और इंदौर में बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। मेरे माता पिता जो थे उनको बहुत संगीत का शौक था, और बचपन से ही उन्होंने संगीत की शिक्षा मुझे दिलाई। अच्छा। स्पेशली क्लासिकल म्यूजिक का बहुत शौक था मेरे पिताजी को। ट्रांसफरेबल जॉब में थे, लेकिन जहाँ भी ट्रांसफर होके जाते थे सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी होती थी कि संगीत गुरु कौन हुआ। तो कभी भी उनके ही प्रयासों की वजह से हम, पिताजी का ट्रांसफरेबल जॉब होने के बाद भी हम सीखते गए, और ये जो पैशन है ये धीरे धीरे, इसी में मेरा ग्रेजुएशन किया। एंड डेफिनेटली जब हम किसी चीज की साधना करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें किसी अच्छे मुकाम पर ले आता है। तो आज जो कुछ भी हूँ वो पिताजी के प्रयासों की वजह से हूँ। बहुत अच्छे बांसुरी वादक थे वो।
1: अच्छा।
2: तो रागदारी का कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन अपने आप जब मैं गाती थी तो फ्लूट पर जुगलबंदी करते थे, और बिना कुछ बताए कि कौन सा राग है, क्या स्वर है, इतना कमाल था। तो क्यों कहूँगी कि उनके आत्मा में संगीत था। बहुत बहुत सुनने के शौकीन, रात रात भर प्रोग्राम सुनना, हम जो छोटे छोटे से थे हमें लेकर जाना, और उन्हीं के कारण ये धीरे धीरे हम सीखते गए और आज यहाँ गए।
1: कोई भी मतलब म्यूजिक हो, चाहे हमारी शिक्षा अध्ययन हो, गुरु का महत्व बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो गुरु कौन से थे आप?
2: बचपन में मैंने शिक्षा पाई श्री हरिश्चंद्र ठाकुर जी से। भोपाल में काफ़ी सालों तक वो एमएलबी कॉलेज में जुड़ी रहे, और उसके बाद जब मैं 1996 में शादी होकर मुंबई आ गई, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले श्री किरण फाटक सर से संगीत सीखा, लगभग 15 साल तो मैंने उनसे फिजिकली, बाद में मैं कहूँगी कि ये तो एक जीवन ही काम है संगीत के लिए, आज भी सर के कांटेक्ट में हूँ और अध्ययन चालू है। उसके बाद 2017 में मैंने अपूर्वा गोखले जी के पास ग्वालियर घराने की गायकी लेना शुरू किया, जो आज भी चालू है। और क्योंकि मुझे सेमी क्लासिकल का बहुत शौक, मेरे पिताजी मेरी आवाज़ सुनकर बचपन में ही कहा करते थे कि आपकी आवाज़ ठुमरी के लायक है, सो मुझे लगाव भी था बहुत। मुझे उस समय में कैसेट्स चलते थे, उन्होंने मुझे काफ़ी सारे कैसेट्स ला कर दिए थे और सुनती रही मैं, सुन सुन के मुझे सेमी का बहुत शौक हो, क्योंकि उसमें जो भाव है वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। तो इस वजह से मैं धनश्री पंडित राय जो शोभा गोखले जी के डिसाइपल हैं उनके पास मैंने जाना शुरू किया, और कुछ थोड़ी बहुत भी जो मैं उनसे तालीम ले पाई हूँ सेमी की,
1: धनश्री जी से मैं भी, मेरी भी मुलाकात हुई थी, बिकॉज आई ऑल्सो हैव सम कनेक्ट विद इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, तो बहुत बड़ी विदुषी है। सुनीता जी, अभी आपने ठुमरी का जिक्र किया है, तो हमारे दर्शकों के लिए एक छोटी सी कुछ बंदी ठुमरी की पेशकश करेंगे, बहुत बढ़िया रहेगा।

0: सुनीता जी, जैसे हम आपने कहा आप कैसेट से बहुत सारे दिग्गजों को सुनती थी, तो आपके फेवरेट कौन है, मतलब इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, शास्त्रीय संगीत में और उपशास्त्रीय संगीत में? आपने जिक्र किया शोभा गुड्डू जी का, तो आपके कौन से मतलब आप किनको ज़्यादा सुनती है, सुनना पसंद करती है और उनसे ज़्यादा सीखती है?
1: मुझे क्लासिकल म्यूजिक में पंडित जसराज जी, उनके डिसाइपल संजीव अभ्यंकर, क्योंकि कई बार कुछ राग हमें कुछ आर्टिस्ट को बहुत अच्छे लगते हैं तो हम सुनते हैं उनको। और लाइट म्यूजिक में मुझे शोभा गुड्डू जी का शुरू से ही पसंद, बहुत पसंद रहा, और इसी वजह से शायद कहीं ना कहीं गणेश जी जी से मुलाकात हो गई और उनको गुरु रूप में मैंने पाया। तो बहुत मुझे गुरुओं का, बहुत सभी गुरुओं का मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद।
0: मानते हैं कि गोइंग टू म्यूजिकल कॉन्सर्ट दैट गिव्स अ मेन इंपैक्ट ऑन अस, मतलब हमारे अपब्रिंगिंग में जो म्यूजिकल कॉन्सर्ट है, जैसे कि आपने शोभा गुड्डू जी का जिक्र किया, मैंने उनको पहले सुना था जब मैं भी छोटी छोटी थी, तो मेरे मम्मी पापा गोवा में दीनानाथ मंगेशकर, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर सम्मेलन स्मृति समारोह होता था, वहाँ पर उनको सुना था।
1: अच्छा,
0: तो आप ऐसे म्यूजिक कॉन्सर्ट में कहाँ कहाँ गए हैं?
1: मुझे शौक था म्यूजिक कॉन्सर्ट अटेंड करने का, गोवा में जब जब भी, क्योंकि किशोर कुमार की नगरी है तो वहाँ पर किशोर कुमार की स्मृति में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते थे। अब तो वहाँ उनकी स्मृति में गौरी कुंज नाम का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बन गया है, अच्छा कॉलेज ओपन हुआ है। तो जब जब भी जैसे मौका मिलता था, तानसेन समारोह में मैं गई हूँ, वहाँ सुनती थी, कालिदास समारोह में गई हूँ वहाँ, फिर हमारे ओंकारेश्वर में नटराज उत्सव होता था जहाँ पर कि बड़े बड़े कलाकारों का गायन होता था। तो छोटी जगह से लेकिन जब जब भी मौका मिलता था मैं जरूर कॉन्सर्ट्स अटेंड करती थी, क्योंकि लाइव म्यूजिक सुन के जो हमारे मन पे उसका प्रभाव होता है वो बहुत ही अलग होता है। इसीलिए शास्त्रीय संगीत में कहा है कि सुनना बहुत जरूरी है,
0: और वो गुरु शिष्य परंपरा भी जी उसको ज़्यादा मायने रखती
1: जी।
0: खंडवा से कुमार गंधर्व जी भी वहाँ पे रहते थे,
1: कुमार गंधर्व जी देवास से,
0: देवास। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप सुनते रहिए आचार्य 98.5 ओल्ड रेडियो। टुडे वी आर हैविंग अ गेस्ट डॉक्टर सुनीता गंगरडे, हु इज अ डिसिपल ऑफ अपूर्वा गोखले जी, एंड शी इज बीइंग अ परफॉर्मर एंड शी इज डिलीवरिंग हर लेक्चर्स।

0: Welcome after the break. You're listening to Acharya 90 FM, your own radio. And today in our guest interview, we have Dr. Sunita Gangareddy, ma'am. Ma'am, आपको ये पूछना है कि आपका अपना अपना रियाज होता होगा. मतलब आप बच्चों को कैसे सिखाते हैं वो तो अगला मेरा क्वेश्चन होगा. लेकिन आप अपना रियाज या अपना जो म्यूजिक ऐसा है कि हम सीखते रहते हैं, हर दिन सीखते हैं, नया नया सीखते रहते हैं, तो आपका रियाज आप कैसे करते हैं?
1: हर एक संगीत का जो प्रेमी होता है, स्पेशली शास्त्रीय संगीत, उसके लिए रियाज बहुत जरूरी है. तो हर दिन मेरे दिन की शुरुआत रियाज से ही होती है. फ्रेश होने के बाद मुझे अपने लिए एक काम चाहिए, कम से कम हाफ एन आवर. तो एक बार जो एक राग हम शुरू कर देते हैं मॉर्निंग में, और रियाज कहते हैं कि सिर्फ अपने लिए होता है. तो मैं एक काम पसंद करती हूँ उस समय में, और जो रियाज में राग लेती हूँ वो दिन भर मेरे दिमाग में चलता रहता है. तो रियाज बहुत ज़रूरी है. कहते हैं रियाज छोटा हम एक स्टेप पीछे आते हैं. तो जितना मुझे लगता है कि मेरे लिए खाना खाना जरूरी है, उतना मेरे लिए रियाज जरूरी है.
0: पहले कहा जाता था सुबह से शाम तक वो रियाज करते थे, और इसलिए वो तानसेन और ये इतने बड़े कलाकार हुए हैं. तो आप वो बिलीव करते हैं कि इतना इतने देर का, इतने घंटों का रियाज होना जरूरी है, या फिर आप दो चार घंटा आपका खुद का रियाज करें, या फिर आधा घंटा रियाज करें? क्योंकि आज हमें बहुत मतलब जॉब पे भी जाना है, बच्चों को भी पढ़ाना है, घर वालों को भी संभालना है, ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है. तो आप किस तरीके से देखते हैं इस सब चीज़ को?
1: एक्चुअली इसके लिए सही तालीम लेना बहुत ज़रूरी है. संगीत ऐसा विषय है जिसमें गुरु के सामने बैठ कर ही सीखा जाता है. आजकल लोग सोचते हैं हम यूट्यूब से सीख लेंगे और हम बड़े विद्वान बन जाएंगे, ऐसा नहीं है. आज के भी टाइम में सही गुरु पूरी श्रद्धा और लगन के साथ गुरु के सामने बैठ कर रियाज करना और गुरु के कहे अनुसार, तो निश्चित है कि आपकी प्रोग्रेस होगी ही. ऐसा नहीं है कि बहुत घंटों करने के बाद ही कुछ मिलता है. सही डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे, तो मैं तो सबको हमेशा सिखाते समय कहती हूँ कि जो भी करना है सब संभाल के करना है. एज ए लेडी हमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं. उसके बाद भी अगर हमें कला में कुछ करना है, कोई भी कला हो, तो हमें सब चीज़ें संभाल के कहा गया है. तो हमें कई घंटों टाइम देना ही पड़ता है. तो रियाज जो है वो तीन तरीके से होता है ऐसा मैं मानती हूँ. फिजिकली बैठ कर जितना हम कर सकते हैं, दूसरा सुनने से. अगर किसी दिन हमें नहीं टाइम मिल पा रहा है तो एटलीस्ट हम सुन लेते हैं. और तीसरा मनन चिंतन करने से, क्योंकि अगर कुछ भी चीज़ें हमारे दिमाग में कंटिन्यूसली चल रही है कि ये राग है, इसके बोल अलग कैसे जाएंगे, कहानी कैसे जाएगी, सरगम कैसे जाएगी, तो वो मन में पूरे टाइम
0: है. आपके अध्यापन की ओर आप सुमेरा कॉलेज में बहुत सालों से है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो अनुभव कैसा रहा आपके जीवन में?
1: मैंने जो शास्त्रीय संगीत सीखा सबसे पहले तो गुरु से तो सीखा ही, लेकिन मैंने स्कूल में भी एक एज ए वन सब्जेक्ट स्कूल में मेरा म्यूजिक था. बाद में मेरा इंटरेस्ट मुझे लगा कि इसमें ही है, मेरे फादर को भी लगा, तो मैंने म्यूजिक में ही एम ए किया. तो वहाँ से जो है मुझे एक दिशा मिल गई, मुझे ऐसा लगा कि मुझे करियर इसी में करना है. तो म्यूज़िक में मैंने मास्टर्स किया, गोल्ड मेडलिस्ट रही मैं इंदौर यूनिवर्सिटी दिल्ली विश्वविद्यालय से. उसके बाद मुंबई आने के बाद भी मैंने सीखना शुरू किया, और धीरे धीरे अध्यापन वाली जो बात कही आपने वो आज तक जारी है, क्योंकि संगीत के लिए एक जन्म ही कम है. तो मेरी गुरु को मैं हमेशा कहती हूँ कि इस जीवन में तो मैं आपको नहीं छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि वो भी अभी तक मेरी गुरु अपूर्वा गोखले जी, अभी तक यशवंत महाले जी और शंकर अभ्यंकर जी से सीख रही हूँ. मेरे गुरु श्री किरण फाटक सर जी, अभी तक विकास कशाड़कर जी से सीख रहे हैं. तो उन्हीं से मुझे गुरुओं से ही प्रेरणा मिलती है कि हम ये तो हम सोच ही नहीं सकते कि अभी हमें आ गया था, क्योंकि जहाँ ये हमने सोचा वहीं हमारी प्रोग्रेस होती है. तो जितना सीखेंगे ये तो समंदर की तरह है, जितना गोता लगाएंगे अंदर उतना आनंद बढ़ने वाला है. तो एक जन्म ही कम है, इसलिए संगीत तो चल रहा है. और माया सुमैया में आने का मेरा ऐसा रहा कि 2015 में मैं सुमैया स्कूल ऑफ म्यूजिक में अपॉइंटमेंट हुआ मेरा. और वहाँ पर ये सब आउटसाइडर भी अटेंड कर सकते थे, सुमैया के स्टूडेंट ऐसा पार्ट टाइम था ये सुमैया स्कूल ऑफ म्यूजिक. तो 2015 से लेकर ये 6 ईयर्स चला, डिग्री कोर्स स्टार्ट करेंगे। तो 2021 से हमारे समय स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स में मैं फैकल्टी हूँ। यहाँ पर बीबीए एमबीए पीएचडी सर्टिफिकेट कोर्सेज इन सब के लिए।
0: तो मैम आजकल के बच्चे बहुत टेक्निकली मतलब टेक्निक ज़्यादा यूज करते हैं, तो उनके प्रति जैसे हम देखते हैं पुणे में है, कहीं कहीं कुछ बेंगलोर में है, जो संगीत आपने कहा मध्य प्रदेश में, वो म्यूजिक के प्रति ज़्यादा उनका लगाव रहता है। लेकिन बॉम्बे जैसी सिटी में आप बोल रहे हैं तो इतना अच्छा आप डिलीवरी दे रहे हो, 75 स्टूडेंट्स हैं, तो उनका मतलब शास्त्रीय संगीत के प्रति कैसा उनका लगाव है उसके बारे में थोड़ा बताएं।
1: एक्चुअली आजकल के जो यंग बच्चे हैं वो शास्त्रीय संगीत के प्रति उनका रुझान कम है, लेकिन मेरी यही कोशिश रही कि मेरा सिखाने का जो तरीका था, जब मैंने यहाँ महसूस किया 2015 में आने के बाद कितनी भागदौड़ भरी लाइफ में कितने लोग शास्त्रीय संगीत सीखने आते हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स आए वो इस वजह से बढ़ते गए क्योंकि उनको मेरा टीचिंग स्टाइल बहुत पसंद आया। बिकॉज थोड़ी सी मैं लाइट की बात करती थी, जैसे मैंने आज अमीर राग सिखाया है उनको और मैंने स्वर बता दिए हैं कि उसके साथ अगर मैंने उनको रिलेट कर दिया कि ये जो थोड़ा सा हम लाइट की बात करते हैं उससे बच्चों को एक समझ में आता है कि अरे ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है, लेकिन राग हमें आज पता चला बेस्ड ऑन राग मीर, तो उनका जो है इंटरेस्ट और बढ़ जाता है। और कुछ भी नहीं आने के बाद भी जब मैं कोई राग सिखाती थी तो वो इमीडिएटली सॉन्ग्स बताते थे, मीन्स वो रिलेट कर पाते थे कि अरे मैम यमन राग आपने बताया तो ये सब गाने यमन के हैं विदाउट एनी नॉलेज, तो ये बहुत अच्छा लगता था। और इस वजह से बहुत सारे लोग सीखने आने लगे। तो मुझे लगता है आज के टाइम में हम सिर्फ क्लासिकल की बात करें उसके बजाय अगर हम थोड़ी सी उनको इंटरेस्टिंग तरीके से जानकारी देते हैं तो उनका इंटरेस्ट। परफॉर्मिंग आर्ट है तो ज़्यादातर तो वेटेज परफॉर्मेंस की तरफ रहता है, लेकिन फिर भी जब हम उसमें डिग्री ले रहे हैं तो हम थ्योरी का हमारे यहाँ जो करिकुलम है उसमें 3 पेपर थ्योरी के,
0: अच्छा
1: 2 प्रैक्टिकल के, तो उसमें फंडामेंटल आ जाता है, हिस्ट्री आ जाता है, अप्लाइड थ्योरी आ जाता है, तो बच्चे आजकल थोड़ा पसंद कम करते हैं। लेकिन हमारे ऐसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको शास्त्र के बारे में भी पूरी जानकारी, बिकॉज क्या होगा कि शास्त्र नहीं पता है ना तो वो म्यूजिक को इतने अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो भरत के नाट्य शास्त्र से लेकर संगीत रत्नाकर के आचार्य शारंगदेव जी ने उसमें क्या लिखा है, ये सब विक्रमी पुस्तक मालिका की बंदिश है, और सारी चीज़ें हम उनको बहुत इंटरेस्टिंग वे में बताते हैं जिससे कि उनकी उनकी रुचि बनी रहे और वो थ्योरी में भी बहुत अच्छे से पढ़ सकें।
0: और ऑटोबायोग्राफी में कितने लोगों की ऑटोबायोग्राफी
1: है, कई बार बच्चे बोलते हैं कि मैम क्या पता हमें पता ही नहीं उनके नाम, हम क्यों पढ़े, लेकिन फिर हम उनको बड़े प्यार से समझाते हैं कि देखो जो विद्वान हुए वो आपको तो पता होने चाहिए कितना स्ट्रगल करके उन्होंने क्या हासिल किया, तो तब उनको अच्छा लगता है और वो पढ़ते हैं। आजकल के जो है वो तो उनको समझ में आता है, हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं, पंडित जसराज जी हैं, भीम सिंह जोशी सर जिनको उन्होंने देखा है या उनके बारे में सुना है, लेकिन जो बहुत पुराने हैं उसमें उनको थोड़ा सा कम इंटरेस्ट आता है। लेकिन उनको हम यही बताते हैं कि आपको इनसे प्रेरणा लेना है, सिर्फ ये नहीं कि लिखना है और बस एग्ज़ाम देना है, कि कहीं ना कहीं आपके जहन में रह जाएगा कि उन्होंने उसके लिए कितना संघर्ष किया उस ज़माने में जब ज़्यादा साधन नहीं थे और उन्होंने कितना रिग्रेस रियाज करके और वो सब अचीव किया है।
0: और आजकल भी ये ज़माने में मतलब 21st सेंचुरी में भी अभी राहुल देशपांडे जी है, महेश कार्य जी है, उनकी वजह से ये जो यूथ है वो फिर से शास्त्रीय संगीत की तरफ बढ़ चुके हैं, ऐसा आपको लगता है?
1: बिल्कुल सही कहा आपने। राहुल देशपांडे जी का मैं देखती हूँ कि वो वसंत राव देशपांडे जी के नाती हैं, लेकिन उसके बाद भी संगीत मुझे ऐसा लगता है कि संगीत काम के नहीं रख सकते, बहुत मतलब बहुत थोड़े लोग मिलेंगे जो केवल क्लासिकल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन जैसे हमारे यहाँ भी मैं देख रही हूँ माया सोमैया में अभी 40+ स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वो सीख रहे हैं क्लासिकल बिकॉज उनको डिग्री लेना है, लेकिन उनका सबका इंटरेस्ट देखा जाए तो वो मुंबई में एक ही लक्ष्य लेके आए हैं। तो ये हम देख रहे हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हर तरह का गाना आना चाहिए,
0: लेकिन वो जो शास्त्रीय संगीत को जो ग्लैमर है, मतलब जो फिल्मी म्यूजिक को जो ग्लैमर है वो शास्त्रीय संगीत को नहीं है। ये जो है इसके लिए वो ये जो यूथ है वो इसे अट्रैक्ट होते हैं ज़्यादातर फिल्मी संगीत की तरह, जैसे आपने बराबर करा।
1: तो मेरा यही इंटेंशन है डरते हैं या जो ऐसा समझते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है या बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, उनकी टेंडेंसी दूर करना। मैंने इसीलिए 17 से शुरू किया मेरा यूट्यूब चैनल, बिकॉज वो टाइम में पेंडेमिक में काफ़ी मतलब हमारी क्लासेस ऑनलाइन
0: ऑनलाइन होते थे,
1: हमने सोचा भी नहीं था कभी कि हम ऑनलाइन सीखा पाएंगे शास्त्रीय संगीत, लेकिन वो टाइम ने ये सब सिखा दिया। और उसके बाद जो कंडीशन में सिखा
0: जुड़ते हैं सुनीता डॉक्टर सुनीता गंगाडे मैडम से। आप सुनते रहिए आचार्य 90 FM।

0: वेलकम आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक, यू आर लिसनिंग टू आचार्य वैद्य फ्रॉम योर ओन रेडियो। और आज हम डॉक्टर सुनीता गंगाले मैडम से बातचीत करें। मैम, अभी पढ़ते हैं आपकी पीएचडी की ओर। पीएचडी में आपने बहुत सारे रिसर्च पेपर, मतलब उनके सब्जेक्ट भी बहुत अलग से हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए। और वो म्यूजिक थेरेपी का जो आपने हमारे कॉलेज में भी जो सेशन दिया, जो हम सारे अध्यापकों ने उसको बहुत सराहा, तो उसके बारे में वो आपको वो आइडिया आया कहाँ से कि कैसे लिंक करेंगे? आपने तो मेंशन किया पढ़ाते पढ़ाते वो आइडिया आपको आ गया, तो उसके बारे में हम दर्शकों को थोड़ा सा बता रहे हैं।
1: बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से वो मेरे माइंड में आया था, वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इंटरनेशनल, जिसको एस आई एस कॉलेज ऑर्गेनाइज किया था, और प्लेस नहीं मिल रही थी उनको प्रॉपर। तो हमारे यहाँ सुमैया विद्या विहार ने उनको प्लेस अवेलेबल करवाई थी। तो हमारे यहाँ तक उस समय में सुंदराजन सर के सर थे हमारे यहाँ, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि मैडम आप इसमें रिसर्च पेपर डालिए, अच्छा इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया, मेरा शुरू से इंटरेस्ट रहा था म्यूजिक थेरेपी के वजह के ऊपर, तो मैंने उसमें एक रिसर्च पेपर डाला। और जब उसको प्रेजेंट करने का टाइम आया, मैंने सोचा कि सब लोग ऐसे ही अपने अपने पेपर रीड करते हैं, लेकिन उसमें क्या मज़ा है? हम अगर परफॉर्मिंग एरिया से हैं, तो परफॉर्मिंग आर्ट से, तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से करना चाहिए। तो मैंने उसी रिसर्च पेपर को प्रैक्टिकली, जो मैंने लिखा था उसमें, उसको मैंने प्रैक्टिकली गा के बताया। और वो साउथ इंडियन कम्युनिटी के सारे ऑडियंस थे, तो लेकिन इतना उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया, और वहीं से मुझे पहला आया कि ये बहुत अच्छा है। और वो करके मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला, बिकॉज हम सब कुछ अपने लिए ही करते हैं, लेकिन ऐसा लगा कि बिना औषधि के अगर हम किसी को थोड़ा भी रिलैक्स फील करवा सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और तब से मैंने शुरू किया, और आज मुझे लग रहा है कम से कम 10 से 12 जगह पर मेरे लिए म्यूजिक थेरेपी के सेशन हो चुके हैं।
0: मैंने भी सुना है, मतलब प्लांट्स ग्रो होते हैं, ये जो पेशेंट्स हैं हॉस्पिटल्स में ज़्यादा करके म्यूजिक डाला जाता है ताकि वो सुन सके, और उसमें वो ज़्यादा रिकवर भी ज़्यादा फास्ट होता है। तो ये म्यूजिक थेरेपी एक अच्छा इट वर्क वो भी सुनते। अगर सुबह में भी हम जब गाना सुनते हैं तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है, वो भी है। तो आप थोड़ा म्यूजिक थेरेपी का जो आपका सेशन है उसका थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन हमें देंगे?
1: ज़रूर ज़रूर। म्यूजिक थेरेपी में मैंने फिर जब मुझे इंटरेस्ट आया तो मैंने थोड़ा सर्च शशांक कट्टी जी, जो मुंबई में म्यूजिक थेरेपी पर बहुत काम कर रहे हैं, उनका मुझे बहुत अच्छा लगा। और उन्हीं से थोड़ा सा मैंने उनके वीडियोज़ के थ्रू ही मैंने थोड़ा सा रेफरेंस लिया, और फिर मैंने ये फाइंड आउट किया कि कौन से प्रॉब्लम्स के ऊपर कौन से राग इफेक्टिव हैं और उन रागों का क्या प्रभाव है। तो मैंने कुछ कॉमन डिसऑर्डर चूज़ किए और उसके ऊपर इफेक्टिव रागों को चूज़ किया, और फिर उसको इंटरेस्टिंग तरीके से, बिकॉज हम अपनी पसंद के अनुसार संगीत सुने तो वो ज़्यादा काम करेगा। तो उसके एक क्लासिकल बंदिश, अगर आप मराठी सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो मराठी गाने, भावगीत, नाट्यगीत, कुछ फिल्मी गीत, तो हर एक की पसंद के अनुसार मैं वो गाने बताती हूँ। और जब मैं उनको गाकर बताती हूँ और एक वर्कशॉप की तरह से हम इस प्रोग्राम को लेते हैं, तो ऑडियंस भी बहुत इन्जॉय करते हैं, क्योंकि उसमें उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो इस तरीके से ये सोचा ही नहीं था और शुरू हो गए, और बहुत जगह पर होते जा रहे हैं और लोगों को पसंद आ रहा है मेरा काम।
0: तो थोड़ा वापस से गाना सुनना चाहेंगे? तो इसका रिलेटेबल थोड़ा, मतलब शास्त्रीय संगीत और फिल्मी म्यूजिक।
1: जैसे मैं म्यूजिक थेरेपी में स्ट्रेस के लिए रागे मन की बात करती हूँ।

0: और एक क्वेश्चन, अभी अभी हम एंड पे हैं इंटरव्यू के, तो वो पूछना चाहूंगी कि आजकल के बच्चे बहुत कम, मैं ये नहीं करना चाहूंगी क्योंकि इट इज नॉट देयर फॉल्ट कि वो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं टेलीविजन के जो रियलिटी शोज है उनके ऊपर, क्योंकि उनके मतलब छोटे से समय में उनको नेम फेम मनी सब मिल जाता है। तो आप रियलिटी शो के जज भी रह चुके होंगे या फिर कहीं पे भी आप प्रतियोगिता में जाते हैं तो आप परीक्षक के रूप में जाते होंगे, तो बच्चों को आपको क्या मतलब एडवाइस देना है, क्या मार्गदर्शन करना है कि रियलिटी शो को आपको किस तरह से देखना चाहिए?
1: रियलिटी शो से डेफिनेटली बहुत क्लासिकल संगीत का रुझान बढ़ा है, क्योंकि जब बच्चे क्लासिकल बेस्ड सॉन्ग्स गाते हैं तो जैसे फिल्मों में शास्त्रीय संगीत आने के कारण शास्त्रीय संगीत सीखने बहुत लोग आते हैं, जो मेरा विषय भी है प्लास्टिंग। तो इसी तरीके से रियलिटी शोज में देख के बच्चों को बहुत लगता है अरे मैं भी उनकी तरह गाऊँ, इसलिए लोग ट्रेनिंग लेते हैं थोड़ा, लेकिन वो उतना सा मुझे लगता है सफिशियंट नहीं है, क्योंकि जो थोड़े समय के लिए जो एक फेम मिलता है वो थोड़े समय बाद ही खत्म भी हो जाता है। अगर आपको लंबे समय तक टिकना है तो आपको प्रॉपर गुरु के साथ गुरु के मार्गदर्शन में सालों तक सीखना होता है, मैं कहूँगी कम से कम 5-10 साल तो आपको उसका प्रॉपर गाइडेंस लेना होता है आपके गुरु, और उसके बाद भी रियाज करना होता है, क्योंकि सीखना एक तरीके से सीख लिया लेकिन जब तक हम उसको डाइजेस्ट नहीं करेंगे, जिस तरीके से हम जैसे खाना खाना ही सफिशेंट नहीं है उसको डाइजेस्ट करना इम्पॉर्टेंट है, उसी तरीके से गुरु ने सिखा दिया है लेकिन जब तक हम उसको घंटों बैठ के रियाज नहीं करेंगे तब तक चीज़ें खुद से नहीं निकलेंगी, क्योंकि दाग है जब तक वो आत्मसात नहीं हो जाता है तब तक हम उसको इम्प्रोवाइजेशन बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों में वो कमी है आजकल, उनको लगता है कि नहीं सब कुछ इंस्टेंट मिल जाएगा, होती है जिनके पास इतना अच्छा सब कुछ है लेकिन प्रैक्टिस तो नहीं करते हैं, रियाज नहीं करते हैं, गुरु के पास नहीं जाते हैं, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह नहीं टिकते हैं। तो मेरा यही एक गाइडेंस है कि प्रॉपर गुरु के पास शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा लेनी चाहिए।
0: और अंत में ये पूछना चाहूँगी कि आजकल लाइव कॉन्सर्ट ज़्यादा होते हैं, मतलब इंडिया में भी होते हैं बाहर भी होते हैं, और लाइव कॉन्सर्ट में ज़्यादा आशा जी बहुत
1: ऑडियंस कहाँ कैसे ऑडियंस है, तो एक आर्टिस्ट को मुझे लगता है कि हर तरह से तैयार रहना चाहिए। कि अगर परवीन सुल्ताना जी का मुझे एक बार याद है एक कॉन्सर्ट में अटेंड किया था कि मैं एक चीज गाती हूँ और दर्शकों की नज़रों से समझ जाती हूँ कि दर्शक क्या चाहते हैं, है ना। तो प्योर क्लासिकल आर्टिस्ट हैं लेकिन धीरे से वो टर्न हो जाती है, फिर कुछ थोड़ा सा झक ताल या रूपक ताल की कोई बंदिश ले लेंगे बहुत बड़ा ख्याल डिटेलिंग न करते लेकिन जब उनको पता है कि नहीं ऑडियंस और आर्टिस्ट वही खड़ा होता है जो समझ जाए कि हाँ ये ऑडियंस क्या चाहती है, इनका टेस्ट क्या है, तो मुझे लगता है कि कॉन्सर्ट करने के लिए हमें उस तरीके की तैयारी रखनी चाहिए कि ऑडियंस के मुताबिक क्या। वैसे तो कहा जाता है कि शास्त्रीय संगीत किसी को रिझाने के लिए नहीं है, ये तो ईश्वर की आराधना के लिए है। और आजकल का लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे टाइम बदल रहा है आज हम सिर्फ उसी भावना को लेकर नहीं चल सकते, बिकॉज हमें अगर कॉन्सर्ट करना है तो हमें थोड़ा सा इस बात के लिए अवेयर रहना चाहिए कि ये ऑडियंस क्या चाहती है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर सुनीता जी फॉर जॉइनिंग अस ऑन आचार्य 98 FM। और अभी हम इस इंटरव्यू का आई थिंक एंड आपके सुरीले गानों से करते जा रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू टू प्ले समथिंग।
1: एक फिल्मी गाना सुना देती हूँ थोड़ा सा, जो मुझे बहुत पसंद है।

ढाई शाम रोक लई, रोक लई, रोक लई, ढाई शाम रोक लई, औचक मुख चूम लई, मुख चूम लई, मुख चूम लई, सर से मोरी चुनरी गई, गई, गई, सर से मोरी चुनरी गई, सरक सरक सरक, सरक सरक सरक, सरक सरक

भरी मटकी दधकी भरी मटकी दधकी भरी मटकी लई जात रही डगर बीच आहट सुन आहट सुन आहट सुन जियरा गयो धड़क धड़क धड़क

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानी के उलट। आज की कहानी है बहुत ही ज्यादा थ्रिलर से भरी हुई। ये कहानी है एक किडनैपिंग की, एक किडनैपिंग जिसमें बहुत सारी चीजें हैं। वो चीजें अगर मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं तो फिर आप कहानी नहीं सुनोगे ना, इसके लिए आपको पूरी कहानी सुनोगे और इस कहानी के इतने मजे लेने कि शायद जैसे एक मूवी चलती है ना 3 घंटे की, ठीक उसी तरह। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी जिसका शीर्षक है गुमशुदा। मुंबई की बारिश का अपना अलग ही मूड होता है। कभी लगता है कि शहर को साफ कर रही है और कभी लगता है कि शहर को डुबा रही है। 22 जुलाई रात के 9:47 हो चुके थे। अंधेरी ईस्ट एक 1 BHK फ्लैट में अयान खान अपनी कॉफी के साथ लैपटॉप पर क्राइम आर्टिकल कंप्लीट कर रहा था। वो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था, ऐसा रिपोर्टर जो पुलिस प्रेस रिलीज से ज्यादा गलियों के सच पर भरोसा करता था। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ, अननोन नंबर। हेलो। दूसरी तरफ से कुछ सेकेंड्स तक सिर्फ सांसे सुनाई दी, फिर एक छोटी सी बच्ची की कांपती हुई आवाज, पापा मुझे घर जाना है प्लीज। अयान तुरंत सीधा बैठ गया। बेटा कौन हो तुम, तुम्हारे पापा का नाम क्या है? लेकिन जवाब देने से पहले ही कॉल कट हो गया। रूम में सिर्फ बारिश की आवाज बच गई। उसने तुरंत नंबर रिडायल किया। द नंबर यू आर डायलिंग इट स्विच ऑफ। 1 मिनट बाद व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन आता है, एक फोटो, 8 साल की एक लड़की, हाथ कुर्सी से बंधे हुए, आंखों पर काला कपड़ा, पीछे नमी वाली पुरानी दीवार और नीचे सिर्फ एक लाइन, 24 आवर्स पुलिस गई तो लाश मिलेगी। अयान की उंगलियां ठंडी पड़ गई। ये प्रैंक नहीं, एक ऐसी चीज थी जो शायद किसी का भी दिल दहला सकती थी। टीवी ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में चल रही थी। एंकर की आवाज आई, मुंबई के मशहूर बिजनेसमैन राजीव मल्होत्रा की 8 साल की बेटी अन्या मल्होत्रा स्कूल से लापता हो गई है। स्क्रीन पर जो फोटो दिखी थी ये वही बच्ची थी। अयान ने फोन और टीवी दोनों को एक साथ देखा। उसके पास वो फोटो कैसे आई? किडनैपर ने उसे ये क्यों कांटेक्ट किया? पुलिस को क्यों नहीं? उसने तुरंत अपनी एडिटर मीरा को कॉल किया। मीरा, मेरे पास आन्या का किडनैपिंग प्रूफ है। दूसरी तरफ 3 सेकेंड्स की खामोशी। पुलिस को कॉल करो। मैसेज में क्लियरली लिखा है पुलिस गई तो मीरा बच्ची नहीं बच पाएगी। मीरा ने बीच में रोका, अयान कभी कभी जर्नलिस्ट होने से पहले इंसान बनना पड़ता है, और उसने कॉल कट कर दिया। लेकिन अयान का इंस्टिंक्ट कुछ और कह रहा था। किडनैपर उसे कुछ और दिखाना चाहता था। अयान पूरी रात अपने बेड पर इधर से उधर करवटें बदल रहा था, फोटो देख रहा था और बस यही सोच रहा था कि आखिर किडनैपर ने उसे ही क्यों कांटेक्ट किया। अगली सुबह आन्या के स्कूल के बाहर मीडिया का समंदर था। पुलिस बैरिकेड्स थे, कैमरास थे, रोते हुए पेरेंट्स। अयान प्रेस कार्ड दिखाकर अंदर गया। गेट के सीसीटीवी रूम में उसका पुराना दोस्त मिला, इंस्पेक्टर कबीर। कबीर ने उसे देखते ही खाया, इस बार स्टोरी मत बनाना, एक बच्चे की जान का सवाल है। अयान ने फोन निकाला और अपने दोस्त कबीर को फोटो दिखाई। फोटो देखते ही कबीर का चेहरा सफेद पड़ गया।
ये फोटो तुम्हारे पास कैसे आई? अयान ने कबीर को सब सच बता दिया। कबीर ने बिना देर किए फोन फॉरेंसिक टीम को फोन लगाया और कहा, अब तुम कहीं और नहीं जाओगे। थोड़ी देर बाद सीसीटीवी फुटेज प्ले हुई। 3:12 पर आन्या स्कूल के गेट से बाहर निकली। नॉर्मली ड्राइवर उसे पिकअप करता था, लेकिन उस दिन एक व्हाइट स्कूल वैन उसके सामने रुकती है। ड्राइवर यूनिफॉर्म में था, वैन पर स्कूल का स्टिकर भी लगा था। आन्या बिना डरे अंदर बैठ गई। 3 सेकेंड्स वैन गायब। कबीर धीरे से बोला, स्टिकर फेक था, प्रोफेशनल किडनैपिंग हुई है प्लानिंग के साथ। अब सारी चीजें जो है आन्या के पिताजी के पास। राजीव मल्होत्रा का बंगलो किसी होटल से कम नहीं था, लेकिन उस दिन हर रूम में सिर्फ एक ही चीज थी, खौफ। आन्या की मां नैना पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो पूरी रात रो रही थी। राजीव उसे बार बार एक ही बात बोल रहा था कि तुम डरो मत, मैं किडनैपर को बोल दूंगा, पैसे चाहिए तो ले लो, लेकिन मेरी बेटी वापस मुझे दे दो। तभी घर के फोन पर एक रिंग बजती है और सब चुप हो जाते हैं। राजीव ने स्पीकर ऑन किया। एक डिसऑर्डर्ड आवाज, 20 करोड़ कैश 24 घंटे के अंदर। राजीव बोला, मैं दे दूंगा। किडनैपर हंसा, पैसे इंपॉर्टेंट नहीं, तुम्हारा दर्द इंपॉर्टेंट है। इतना कहकर कॉल कट हो गया। कबीर ने धीरे से कहा, सर ये जो किडनैपिंग हुई है ये सिर्फ पैसों के लिए नहीं हुई है, इसके पीछे कुछ पर्सनल मोटिव है। फोरेंसिक रिपोर्ट आई। फोटो के बैकग्राउंड में एक छोटा सा बोर्ड ब्लर था, इमेज इनहांस हुई, सिर्फ 2 लेटर्स दिखे, आर के। कबीर बोला, ये आर के वेयरहाउस है शायद। अयान तुरंत खड़ा हुआ। रे रोड में आरके कोल्ड स्टोरेज था, 5 साल पहले वो बंद हुआ था। कबीर उसकी तरफ देखने लगा और कहा, चलो जल्दी चलो। सब निकल पड़े रे रोड। समंदर के पास एक पुराना गोडाउन, दरवाजा आधा खुला हुआ, अंदर अंधेरा, पानी टपकने की आवाज। टॉर्च की रोशनी में जमीन पर छोटे छोटे पिंक कैरियन के टुकड़े पड़े थे। कबीर झुक गया। ये बच्ची यही पर थी। आयान को एक दीवार पर कुछ लिखा दिखा, क्रूक हैंडराइटिंग, पापा सेव मी। उसके नीचे एक टेडी बियर, लेकिन बच्ची वहां नहीं थी, सिर्फ एक रिकॉर्डर था। कबीर ने उस रिकॉर्डर का प्ले बटन दबाया। आन्या की आवाज, पापा मुझे बहुत डर लग रहा है। और फिर अचानक से एक आदमी की आवाज आई, अयान अगर हीरो बनने की कोशिश की तो अगला रिकॉर्डर नहीं सिरे लाश मिलेगी। रिकॉर्डर बंद। कबीर ने धीरे से अयान की तरफ देखा। अब ये सिर्फ राजीव का केस नहीं रहा, किडनैपर तुम्हें भी जानता है। बाहर बिजली चमकी जोर से और कहानी का असली अंधेरा अब शुरू हुआ। तो दोस्तों, राजीव जो कि शहर का बड़ा बिजनेसमैन है, उसकी बेटी आन्या किडनैप हो चुकी है, और किडनैपर ने राजीव को कनेक्ट नहीं करके पहले आन्या की फोटो भेजी अयान को, और फिर 20 करोड़ की डिमांड की, और ये भी कहा कि पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारा दर्द इंपॉर्टेंट है। तो इससे तो साफ पता चलता है ये किडनैपर कोई बाहर का नहीं, ये कुछ पर्सनल था। लेकिन क्या पर्सनल था ये आप और मैं जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM पर कहानियों की गुलाब।

time, they lived a ghost. He was known to be a killer. वेलकम टू अचार्य 90 FM. मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बे स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में. आन्या किडनैप हो चुकी है और कबीर और अयान उस लोकेशन पे पहुंचे थे जहां आन्या को किडनैप करके रखा था. लेकिन इनके पहुंचने से पहले ही किडनैपर आन्या को वहां से लेकर फरार हो गया और वहां पर एक रिकॉर्डर मिला जिसमें ये कहा था कभी अयान हीरो बनने की कोशिश मत करो. तो इससे पता चलता है कि जो किडनैपर है वो राजीव और अयान दोनों को जानता है और उनकी हर चाल को भी समझता है. अब देखते हैं आगे क्या होता है. आर के वेयरहाउस के बाहर निकलते ही कबीर ने पूरा एरिया सील कर दिया. मीडिया को एक शब्द भी नहीं पता चलना चाहिए. उसने कमांड दिया. अयान रिकॉर्डर को बार बार सुन रहा था. हर बार उस डिसऑर्डर्ड आवाज में एक अजीब सी फैमिलियरिटी थी महसूस हो रही थी. रात के 1:18 हो चुके थे. उसके फोन पर फिर नोटिफिकेशन आया. इस बार वीडियो था. वीडियो ऑन हुआ. आन्या एक छोटे से कमरे में बैठी थी. उसके सामने एक बर्थडे केक रखा था लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे. कैमरे के पीछे से वही आदमी बोला, हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस. अयान का दिल रुक सा गया. आज आन्या का बर्थडे था. फिर कैमरा सीधा अयान की तरफ घुमा जैसे वो देख रहा हो. जर्नलिस्ट साहब, 2019 याद है? वीडियो खत्म. अयान के हाथ कांपने लगे. 2019, वो साल जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी. 3 पहले अयान ने एक एक्सपोज किया था. रुद्रा बायोटेक नाम की फार्मास्यूटिकल कंपनी बच्चों के मेडिसिन में फेक क्लिनिकल डेटा यूज कर रही थी. रिपोर्ट पब्लिश हुई, कंपनी बंद हुई, सीईओ अरेस्ट हुआ. लेकिन एक आदमी पुलिस इनकाउंटर में मारा गया. बताया गया उसका नाम था राघव खुराना, इन्वेस्टिगेशन का मास्टरमाइंड. कबीर ने धीरे से बोला, ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से राघव डेड है. अयान ने हमें सर हिला के मंजूरी दी और कहा, लेकिन नहीं, अगर ये वो नहीं तो फिर वो मर चुके हैं तो ये जिंदा कौन है? पुलिस स्टेशन में पैनिक मच गया. दूसरी कंप्लेंट फिर से आई और अब जो गुमशुदा था वो था 10 का विवान. सेम पैटर्न, फेक स्कूल व्हीकल, सेम टाइमिंग. कबीर ने टेबल पर मैप फैलाया. दोनों स्कूल एक ही रेडियस में थे. आयान ने मार्कर उठाया और दोनों लोकेशंस को ज्वाइन किया. बीच में एक अबॉन्डेड मेट्रो टनल आता है. ये वही रूट है, आयान बोला. कबीर ने तुरंत स्पेशल टीम भेजी लेकिन टनल खाली निकला. सिर्फ एक चीज मिली, एक चेस बोर्ड और उस पर लिखा था, ब्लैक किंग गायब. पीछे मार्कर से लिखा था, गेम अभी शुरू हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या. सुबह 6 फॉरेंसिक लैब से कॉल आया. वेयरहाउस के फिंगरप्रिंट्स मैच हुए. सब शॉक हो गए. प्रिंट्स किसी क्रिमिनल के नहीं थे, राजीव मल्होत्रा के पर्सनल सिक्योरिटी हेड महेश यादव के थे. महेश को तुरंत कस्टडी में ले लिया गया. इंटरोगेशन रूम में कबीर चिल्लाया, आन्या कहां है? महेश रोता रहा और कहता रहा, मैंने सिर्फ गेट खोला था. मुझे लगा फेक किडनैपिंग है. मुझे 50 दिए गए थे. किसने? महेश ने धीरे से बोला, राघव. रूम में सन्नाटा छा गया. महेश ने एक और नाम लिया. अंदर कोई और भी थे. कौन? महेश जवाब देने ही वाला था कि ढाम. बाहर से स्नाइपर की
गोली खिड़की को तोड़ते हुए उसके सीने में लगी। महेश वही मर गया। किलर ने अपना सबसे बड़ा विटनेस खत्म कर दिया। अब पूरे पुलिस स्टेशन में सन्नाटा था। जो उनका इकलौता गवाह था उसे भी गोली लग चुकी थी और वो मर चुका था। सारी फ्रस्ट्रेशन को लेकर जब अयान अपने घर लौट रहा था, उसकी घर की लिफ्ट खुली। अंदर एक गिफ्ट बॉक्स पड़ा था। उस पर लिखा था, ओपन एट होम। कबीर ने मना किया। कबीर ने कहा, कुछ भी हो सकता है इसमें। कबीर ने बॉम्ब स्क्वाड को बुलाया। बॉम्ब स्क्वाड ने बॉक्स खोला। अंदर बॉम्ब नहीं था, एक पुरानी फोटोग्राफ थी, 12 साल पुरानी फोटोग्राफ। फोटो में अयान, उसकी छोटी बहन सारा और उसके पेरेंट्स थे। सारा जो 14 साल की उम्र में मिस्टीरियस मिसिंग हुई, कभी मिस्टीरियसली मिसिंग हुई और कभी मिली ही नहीं। फोटो के पीछे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, उस दिन भी तुम उसे बचा नहीं पाए थे और अब भी तुम दोनों बच्चों को बचा नहीं पाओगे। अयान टूट गया। कबीर समझ गया, ये किडनैपिंग सिर्फ राजीव के खिलाफ बदला नहीं, ये अयान के खिलाफ पर्सनल वॉर भी है। और असली सवाल अब ये था, क्या सारा का डिसअपीयरेंस भी राघव से जुड़ा हुआ था या फिर इस कहानी का, इस किडनैपिंग का एक और ही अलग एंगल है। तो दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम जान रहे हैं कि ये जो किडनैपर था, ये कोई पर्सनल पहचान वाला ही था, जिसे शायद कभी ना कभी अयान के वजह से कुछ ना कुछ तकलीफ हुई होगी या कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई होगी। और ये किडनैपर उसी पर्सनल चीजों को लेकर धीरे धीरे लोगों को किडनैप कर रहा था। दो लोगों तो वो किडनैप कर चुका था। और अब जिस तरीके से उसने अयान की सिस्टर के बारे में बताया कि उसकी सिस्टर जैसे मिस्टीरियस तरीके से गायब हुई थी, क्या 12 साल पहले की कहानी अब फिर से आके जुड़ेगी या फिर कहानी कुछ अलग ही मोड़ लेगी।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज शब्द स्वागत करता हूँ आपका कहानियों के गुल्लक में। हम सुन रहे थे कि किस तरीके से किडनैपर ने अब अयान को, कबीर को, सबको कंफ्यूज कर दिया है। उसने एक ऐसा सच बताया जो 12 साल पहले सिर्फ कबीर, अयान ये दोनों ही जानते थे। अब उन्हें ऐसा लगने लगा था कि ये जो किडनैपर है ये कोई बहुत करीबी है और ये कोई पर्सनल बदला ही ले रहा है। तो चलिए सुनते हैं कहानी का अगला हिस्सा कि आगे कहानी में क्या होगा। सुबह 8:10 हो चुके थे। क्राइम ब्रांच की फोरेंसिक टीम ने गिफ्ट बॉक्स के एक हिडन मेमोरी कार्ड रिकवर किया। उसमें 12 साल पुराना सीसीटीवी फुटेज था। अयान की 14 साल की बहन सारा को किसी ने फोर्सफुली नहीं उठाया था, वो खुद एक ब्लैक SUV में बैठी थी। ड्राइवर का चेहरा ब्लर था लेकिन उसकी वॉच पर RK का लोगो नजर आ रहा था। कबीर धीरे से बोला, राघव तब से तुम्हारी फैमिली को देख रहा था। अयान की आंखों में आंसू आ गए। उसने सालों तक खुद को सारा की मौत का जिम्मेदार माना था। किडनैपर का फाइनल कॉल आया 12 घंटे, डॉक नंबर 17। अकेले आना वरना आन्या और विवान दोनों मरे मिलेंगे। पुलिस ट्रैकर लगाना चाहती थी लेकिन अयान ने एक प्लान बनाया। कबीर और ATS टीम समुंदर के रास्ते सीक्रेटली वेयरहाउस को सराउंड करेगी। अयान अकेले अंदर जाएगा और ये प्लान ठीक अब उसी तरह एग्जीक्यूट होने लगा। रात के 8 बजे थे। पुराने मुंबई पोर्ट का वेयरहाउस अंधेरे में डूबा हुआ था। दरवाजा खुला,

अंदर हजारों कंटेनर्स, बीच में एक चेयर और उस पर आन्या और विवान बंधे हुए थे और सामने खड़ा था राघव खुराना, वही आदमी जिसे दुनिया मरा हुआ समझ चुकी थी। उसने मास्क उतारा और मुस्कुराया। वेलकम बैक जर्नलिस्ट, आयान ने पूछा, मेरी बहन कहाँ है? राघव हंसा, सारा ने मेरी कंपनी के अगेंस्ट एविडेंस देखा था, उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता था। ये सुनकर आयान के अंदर खून खौल गया और उसका मन हुआ कि वो तुरंत ही राघव को खत्म कर दे। लेकिन राघव जो था वो भी अपनी पूरी प्लानिंग के साथ बैठा हुआ था अंदर। राघव ने रिमोट उठाया, पुलिस अंदर आई तो वेयरहाउस उड़ जाएगा। तभी आन्या ने अपने पैर से एक लोहे की रॉड गिरा दी। आयान समझ गया था, उसने राघव पर जंप किया, रिमोट जमीन पर गिर गया, एक जोर से पंच उसने मारा राघव के मुंह पे और फिर दूसरा पंच। वेयरहाउस में फायरिंग शुरू हो गई। कबीर की एटीएस टीम अंदर घुस चुकी थी। राघव ने भागकर क्रेन पर चढ़ गया, आयान उसके पीछे। 20 फीट की ऊंचाई, नीचे समंदर। राघव चिल्लाया, सच कभी किसी को आजाद नहीं करता। आयान बोला, नहीं लेकिन झूठ जरूर बर्बाद करता है। कबीर ने परफेक्ट शॉट लिया, राघव के सर पे उसकी बंदूक थी, उसका निशाना था और उसने एकदम परफेक्ट शॉट लिया और धड़ाम, गोली राघव के सर से आर पार हो गई। उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधे पानी में गिर गया। वो रिमोट जो राघव अपने हाथों में रखकर वेयरहाउस उड़ाने की धमकी दे रहा था, वो रिमोट अब एटीएस के पास था। कबीर और उसकी टीम दोनों बच्चों को बचाने में सक्सेसफुल हो गई, लेकिन राघव जो पहले से ही मृत घोषित था अब एक्चुअल में मर चुका था। लेकिन बच्चे आजाद हो गए, राघव मर गया। राघव ने मरने से पहले ही बॉम्ब जो था वो एक्टिव कर दिया। अब कबीर ने बॉम्ब स्क्वाड को जल्दी बुलाया और बॉम्ब स्क्वाड बॉम्ब को डिफ्यूज करने में लगी थी। काउंटडाउन शुरू हुआ, 59 सेकेंड, अब वो 50 सेकेंड पे आ गया, 40, 30, 20, 5, 3, फाइनली जो बॉम्ब एक्टिव था वो डीएक्टिवेट कर दिया गया। आन्या और विवान दोनों जिंदा बच गए। 3 महीने बाद राजीव मल्होत्रा ने सारा की याद में एक फाउंडेशन शुरू किया जिसका नाम था सारा फाउंडेशन, जो मिसिंग बच्चों के लिए काम किया करती थी। आयान ने अपनी डायरी की निकाली और उस पर लास्ट लाइन लिखी थी, कुछ लोग गुम हो जाते हैं लेकिन उनकी याद हमें दूसरों को बचाने की ताकत देती है। तो दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी थी जिसमें आयान जो एक ईमानदार जर्नलिस्ट था उसने एक ऐसी चीज को एक्सपोज किया जो शायद समाज के लिए बहुत हानिकारक थी, लेकिन लोगों के दिल में जो बदले की भावना पनपती है, जो बदला लेने की जिद पनपती है, वो जिद कभी कभी एक ऐसे बेगुनाह इंसान को मार देती है जिसकी शायद इस पूरे कहानी में कोई गलती ना हो। यही हुआ आयान की सिस्टर के साथ भी। इंसान सच से लड़ने की कोशिश जरूर करता है अपने झूठ को लेकर, पर झूठ जो है हमेशा सच के आगे जरूर हारता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों।
देर होती है बट जस्टिस जरूर मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM पर सदा बहार।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 एफएम। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों के गुल्लक में। काफी दिनों बाद एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जो शायद आज के वक्त में बहुत जरूरी है। जैसे कि आप और मैं और बाकी सब लोग भी जान रहे हैं कि हम किस तरीके से कितने ज्यादा एआई फ्रेंडली हो चुके हैं, और एआई फ्रेंडली में जैसे किसी एक ने कुछ फिल्टर यूज किया तो उसी फिल्टर को फॉलो करके हम खुद अपनी उस तस्वीर को उस समय हम कैसे दिखते उसमें चले जाते हैं। तो ठीक एक ऐसे ही टॉपिक से रिलेटेड की एक कहानी मैं लेके आया हूँ आपके लिए। कितना इजी है एआई को यूज करना, लेकिन एआई यूज करते करते हम उसमें हमारी क्या क्या पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है? तो बस आपको थोड़ा सावधान करने के लिए, थोड़ा सतर्क करने के लिए लेके आया हूं मैं कहानी जिसका नाम है एक फिल्टर। ये कहानी कोई सावधान इंडिया या क्राइम पेट्रोल की नहीं है, हाँ, लेकिन ये एक नॉर्मल सोची गई समझी गई कहानी है एंड आई होप आपको ये पसंद आएगी। तो कहानी का नाम है एक वायरल फिल्टर की कहानी। एक फोटो सिर्फ एक एआई फिल्टर और 72 घंटों के अंदर एक सीधी सादी औरत की पूरी जिंदगी इंटरनेट पर बिकने लगी। ये कहानी फिक्शन है लेकिन इसमें दिखाए गए साइबर क्राइम 100% रियलिटी से इंस्पायर्ड है। बारिश की हल्की बूंदें, मरीन ड्राइव पर रेट्रो म्यूजिक, रील शूट करने यंगस्टर्स और हर दूसरे फोन में एक ही ट्रेंड, मेक 80s फोटो। 31 साल की आयशा शेख एक गवर्नमेंट एड स्कूल में मास कम्युनिकेशन पढ़ाती थी। सिंपल, इंटेलिजेंट और फैमिली ओरिएंटेड। सोशल मीडिया पर वो इन्फ्लुएंसर नहीं थी लेकिन ट्रेंड्स देखने और उसे फॉलो करने उसे काफी ज्यादा पसंद थे। स्कूल के स्टाफ रूम में सब टीचर्स अपने 80s एआई पोर्ट्रेट्स दिखा रहे थे। देखो आयशा, मैं बिल्कुल रेखा लग रही हूं ना? हाँ, रेखा देख रहे हो? देखो आयशा, मैं बिल्कुल रेखा लग रही हूं ना? जैसे ही कहा पूजा मैम हंस पड़ी। नैना ने धीरे से कहा, मुझे ये एआई ऐप पे ट्रस्ट नहीं है, बहुत परमिशन मांगते हैं। आयशा मुस्कुराई, अरे यार एक फोटो एडिट तो है और क्या। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। घर आकर आयशा ने प्ले स्टोर नहीं बल्कि इंस्टाग्राम से एड से एक ऐप डाउनलोड करी और उस ऐप का नाम था रेट्रो कैम 80s AI। इंस्टॉल होते ही स्क्रीन पर परमिशन आती है, गैलरी एक्सेस, कैमरा एक्सेस, कॉन्टैक्ट एक्सेस, फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट एक्सेस। नीचे छोटा सा टेक्स्ट लिखा होता है, बाय कंटिन्यूइंग यू अग्री टू क्लाउड प्रोसेसिंग। बिना पढ़े आयशा ने सारा अलाउ कर दिया। उसकी सेल्फी अपलोड होती है, प्रोग्रेस बार चलता है 10%, 45%, 100% और धड़ाक से स्क्रीन पर एक खूबसूरत 80s पोर्ट्रेट आ जाता है। आयशा खुश हो जाती है उसे देखकर और व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे दोनों पे वो स्टेटस अपलोड करती है। 3 घंटे के अंदर 1800 व्यूज। उसकी छोटी बहन जारा मैसेज करती है, दीदी बिल्कुल 1984 की हीरोइन लग रही हो। आयशा हंस पड़ती है और फोन साइड में रख देती है, लेकिन बैकग्राउंड में ऐप साइलेंटली 4327 फाइल्स अपलोड कर चुका होता है। उस रात डार्क रूम में कोई लैपटॉप पर डैशबोर्ड देख रहा था। स्क्रीन पर लिखा था, न्यू यूजर सिंक्रनाइज, नेम आयशा एस, फोटो 2981, डॉक्यूमेंट 46, कॉन्टैक्ट 612। एक आदमी सिर्फ इतना बोलता है, नेक्स्ट टारगेट रेडी। आयशा चैन की नींद सो रही होती है, रात है काफी ज्यादा, उसे पता भी नहीं है कि वो जब सो रही है उसके बैकग्राउंड में, उसकी जिंदगी में जो चल रहा है वही बैकग्राउंड में उसके फोन में भी चल रहा है, पर वो इन दोनों चीज से बेफिकर है। उसे पता ही नहीं कि आने वाली सुबह उसकी जिंदगी में क्या लेके आने वाली है।
आयशा को ये भी नहीं पता था कि उसके हनीमून के फोटोज, आधार स्कैन, बैंक स्टेटमेंट्स और फैमिली मेमोरीज भी कोई अननोन देख रहा है। दो दिन बाद रात के 11:07 पर एक अननोन व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आता है। नाइस 80s लुक, ओरिजिनल फोटोज और भी खूबसूरत है। आयशा का दिल एकदम से रुक जाता है। अननोन यूजर फिर से मैसेज करता है, नाइस 80s लुक, ओरिजिनल फोटोज और भी खूबसूरत है। अब सेम दूसरा मैसेज देखकर आयशा के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अब वो सोच में पड़ जाती है कि ये अननोन कौन है और इसे मेरी 80s की फोटोज कहां से मिली, और ये ऐसा क्यों कह रहा है कि ओरिजिनल फोटोज भी इससे ज्यादा खूबसूरत है। तो दोस्तों, आपने जान लिया कि फोटोज शेयर हो चुके हैं, फाइल्स अपलोड हो चुकी है, कॉन्टैक्ट्स भी जा चुके हैं। अब स्कैमर साइबर क्राइम को अंजाम देने वाला है, लेकिन वो साइबर क्राइम को अंजाम कैसे देगा? या फिर आयशा उसके चंगुल से बच जाएगी, या फिर उसके ट्रैप में फंस जाएगी। सुनते हैं कहानी का अगला हिस्सा एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए कोई गाने सुनिए, छोटा मोटा चाय पीजिए थोड़ी बहुत, और जो करना है कीजिए, मैं आता हूँ।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर स्वागत करता हूं आपका कहानियों की गुल्लक में। 80s के इस AI फिल्टर ने सबको पागल कर दिया और पागल कर दिया है आयशा को भी। आयशा ने कभी सोचा नहीं था कि उसके फोन की सारी फाइल्स बैकग्राउंड ऐप में सब क्लाउड पे अपलोड हो चुकी होगी, और क्लाउड में अपलोड होने के बाद किसी एक स्कैमर ने उसे मैसेज भी कर दिया कि भाई आपकी फोटो तो खूबसूरत है लेकिन ओरिजिनल फोटोज और भी ज्यादा खूबसूरत है। तो देखते हैं आगे स्कैम कैसे होता है। घर में सब सो चुके थे, बारिश हो रही थी, आयशा बेड पर बैठी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी और जैसे कि आप जानते हैं उसको एक मैसेज आया था अननोन का कि ओरिजिनल फोटोज और भी ज्यादा खूबसूरत है। आयशा को अब लग रहा था कि कोई उसके साथ चीप प्रैंक कर रहा है, उसने रिप्लाई नहीं किया। 5 सेकंड बाद एक और मैसेज आया, इस बार एक ब्लर्ड फोटो थी। फोटो में वो खुद थी, उसके बेडरूम का मिरर था और वो एक प्राइवेट सेल्फी थी जो कभी किसी को भेजी ही नहीं होती। फोटो में वो खुद थी, उसके बेडरूम का मिरर था और वही प्राइवेट सेल्फी जो कभी किसी को उसने भेजी ही नहीं थी। उसके हाथ से फोन गिर जाता है, उसकी सांसें तेज हो जाती है, अचानक से उसके माथे पर पसीना आने लगता है। अब वो धीरे धीरे पैनिक होने लगती है, उसे घबराहट महसूस होती है कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। और इसी सोच में 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3 वो पूरी रात जागी रहती है और रात जागते जागते सुबह हो जाती है। और सुबह 6 बजे उसको एक मेल आता है, मेल की सब्जेक्ट लाइन होती है वी ओन योर लाइफ, तुम्हारे फोन के कंप्लीट बैकअप हमारे पास है, 48 घंटे में 2,00,000 क्रिप्टो में ट्रांसफर करो नहीं तो हमारी सुबह 6 बजे ईमेल आता है आयशा को, ईमेल की सब्जेक्ट लाइन होती है वी ओन योर लाइफ, तुम्हारे फोन के कंप्लीट बैकअप हमारे पास है, 48 घंटे में 2,00,000 क्रिप्टो में ट्रांसफर करो नहीं तो तुम्हारी प्राइवेट फोटोज, आधार, बैंक डॉक्यूमेंट्स और कॉन्टैक्ट्स पब्लिक कर देंगे। और नीचे काउंटडाउन चल रहा होता है, 47 hours 58 minutes 12 seconds लेफ्ट, 11 seconds 10 seconds 9 seconds, और ऐशा रो पड़ती है। रोते रोते वो बहुत ज्यादा टेंस हो जाती है, बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो अपने फोन की गैलरी खोलती है, उसकी सब फोटोज वही थी और वो सोचने लगती है जब फोन में सब है तो इसके पास सारी फोटोज कैसे चली गई। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसका डेटा कॉपी हुआ तो हुआ कैसे। अब धीरे धीरे उसकी टेंशन बढ़ती जाती है और इसी टेंशन में वो स्कूल के लिए रेडी होती है और रेडी होके वो स्कूल पहुंचती है। स्कूल पहुंचते ही प्रिंसिपल का कॉल आता है उसे, आयशा जी प्लीज ऑफिस में आइए। ऑफिस में 3 टीचर्स चुप बैठे थे, प्रिंसिपल ने फोन दिखाया, एक वायरल इमेज थी फोन में, आयशा का चेहरा किसी और औरत के बॉडी पर AI से चिपकाया गया था। डीप फेक इतना रियलिस्टिक था कि पहली नजर में ऐसा लग रहा था कि वो असली है। आयशा की आंखों से आंसू निकल गए, सर ये फोटो फेक है, आयशा ने रोते हुए कहा। प्रिंसिपल ने तुरंत इमेज डिलीट करवाई लेकिन तब तक वो दूसरे ग्रुप में पहुंच चुकी थी। एक ही दिन में आयशा की पूरी रेपुटेशन खतरे में आ गई थी। समीर घर आया, समीर आयशा का पति है।
आयशा परेशान होकर जब स्कूल से घर आती है तो वो चुपचाप बैठी होती है और समीर घर आता है और आयशा को चुप बैठा देखता है और बोलता है कि सच बताओ आयशा क्या हुआ। आयशा ने पूरा फोन उसके हाथ में दे दिया। 2 मिनट तक समीर सोचता रहा कि आयशा इसे क्यों कर रही है, फिर उसने सिर्फ एक लाइन कही, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। और ये सुनते ही आयशा जोर से रो पड़ी। कभी कभी एक सेंटेंस पूरी दुनिया का बोझ हल्का कर देता है, लेकिन फिलहाल आयशा के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उसके फोटोज वायरल होने लगे थे, झूठे डीप फेक्स बनने लग गए थे, बहुत सारी चीजें उसके कॉलिग्स को शेयर होने लगी थी। अब धीरे धीरे उसने सोचा कि इस मुसीबत से निपटना बहुत जरूरी है और समीर ने उसे कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूं। और क्या, जब आप मुसीबत के समय परेशान होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो आप बस यही कोशिश करते हैं कि आप जिससे प्यार करते हो या जो आपका साथी है या जो आपका हमसफर है, वो बस आपका हाथ थामकर आपके साथ खड़े रहे और बस आपसे इतना कहे कि कुछ नहीं, मैं हूं ना, मिल बांटकर संभाल लेंगे। और समीर ने आयशा को हिम्मत दी और कहा कि हम हार कर चुप नहीं बैठेंगे, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। और अगली सुबह वो मुंबई साइबर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। इंस्पेक्टर रितिका देशमुख उन्हें पेशेंटली सुनती है। सबसे पहले पैसे नहीं देने फॉरेंसिक एक्सपर्ट को फोन कनेक्ट करती है रितिका और कहती है कि सर एक केस आया है, आपसे उस पर बात करनी है। रितिका और फॉरेंसिक टीम वो केस डिस्कस करते हैं और फॉरेंसिक टीम उस केस को चेक करने में लग जाती है। अब चेक करते करते पता चलता है कि गैलरी सिंक्रोनाइज हुई है आपके फोन की, कॉन्टैक्ट्स एक्सपोर्टेड हो चुके हैं, पीडीएफ इंडेक्स हो चुके हैं और लोकेशन मेटाबेस से कॉपी हो चुका है। रितिका बोलती है कि आयशा जी प्रॉब्लम फोटो नहीं परमिशन थी, फेक ऐप ने क्लाउड के नाम पर आपका डेटा अपलोड कर दिया। मतलब मेरा आधार भी, आयशा ने पूछा। जी, और इसलिए वो आपको साइकोलॉजिकली टारगेट कर रहा है। अब आयशा अपनी प्रॉब्लम की मेन जड़ जान चुकी है तो वो देखती है कि आगे क्या करे। और साथ ही साथ इंस्पेक्टर रितिका उससे कहती है कि आपको पैसे नहीं देने हैं, आपको ट्रस्ट करना है हम पर कि किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को झेलते हैं। शाम को ब्लैकमेलर का एक वॉइस नोट आता है, उसकी आवाज रोबोटिक थी। कल 6 बजे तक पैसे नहीं मिले और अगर तुम पुलिस के पास गई तो सोच लेना तुम्हारी छोटी बहन जारा के कॉलेज में फोटोज पहुंच जाएंगी। ये बात सुनते ही आयशा शॉक हो जाती है, जैसे मानो उसका खून जम चुका हो। अब सिर्फ बात आयशा या उसके कलीग तक नहीं, अब ये बात उसकी प्राइवेसी की धीरे धीरे फैमिली और फैमिली से सोशली होने लगी थी। आयशा घबराते हुए तुरंत अपना घर से निकलकर पहुंचती है इंस्पेक्टर रितिका के पास और रितिका को वो सारी बातें बताती है जो ब्लैकमेलर ने उससे कही होती है। इंस्पेक्टर रितिका सारी बात सुनकर टेबल पर जोर से हाथ मारती है और कहती है, कल वो सोचेगा शिकार डरेगा, लेकिन कल शिकार नहीं, पुलिस उसका इंतजार करेगी। रितिका अब एकदम तैयार हो चुकी है आयशा को बचाने के लिए और आयशा जो काफी डरी हुई है, काफी परेशान है, काफी इमोशनली डिस्टर्ब है, मेंटली डिस्टर्ब है, वो बहुत ज्यादा तकलीफ से गुजर रही है। शायद हम उसकी तकलीफ नहीं समझ सकते, लेकिन आप ये समझिए दोस्तों
कि कैसे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसने अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से इतना बिगाड़ लिया है कि शायद अब वो जिंदगी कैसे संभले, ये मैं भी नहीं जानता, ये आप भी नहीं जानते। लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि पुलिस अब तैयार हो चुकी है, या तो ब्लैकमेलर जीतेगा या फिर पुलिस। तो सुनते हैं कहानी का अगला हिस्सा एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM पर सुपर हिट गाने।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट इंदोस आरजे शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। हम सुन रहे थे आयशा की कहानी, किस तरीके से वो डीप फेक का शिकार बन चुकी है और इंस्पेक्टर रितिका अब ठान चुकी है कि वो किसी ना किसी तरीके से उस ब्लैकमेलर को पकड़ के रहेगी और उसे सबक सिखाएगी। ब्लैकमेलर जो है उसकी डिमांड है 2 लाख रुपए क्रिप्टो करेंसी में, और ब्लैकमेलर धीरे धीरे धीरे धीरे उसकी चीजें, उसकी फोटोज, उसके आयशा के कॉलिग से लेकर अब धमकी दे चुका है कि वो फैमिली में भी शेयर करेगा। तो चलिए सुनते हैं कहानी का अगला हिस्सा। साइबर क्राइम सेल का ऑपरेशन रूम, बड़ी स्क्रीन पर काउंटडाउन चल रहा था। 15 मिनट का काउंटडाउन था। रितिका ने आयशा से कहा, जो भी हो घबराना मत, आज हम उसे पकड़ेंगे। आयशा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने व्हाट्सएप खोला, ब्लैकमेलर का मैसेज था, वॉलेट एड्रेस रेडी, पैसे भेजो। रितिका ने इशारा किया, आयशा टाइप करती है, मैं पेमेंट करने के लिए रेडी हूं, बस 5 मिनट दो। मैसेज डिलीवर्ड। टाइपिंग। साइबर टीम के मॉनिटर्स पर डिजिटल सिग्नल्स एक्टिवेट हो गए और धीरे धीरे अब साइबर सेल अपना काम करने लगा। वहां पे साइबर सेल में रितिका के साथ फॉरेंसिक ऑफिसर कबीर भी थे। कबीर ने बोला, मैम ये जो है ब्लैकमेलर, ये VPN यूज कर रहा है, लेकिन इसने एक मिस्टेक कर दी। ब्लैकमेलर ने क्रिप्टो वॉलेट वेरीफाई करते वक्त अपना रियल इंटरनेट कनेक्शन 8 सेकेंड्स के लिए एक्सपोज कर दिया। और कबीर ने चिल्लाया, IP लॉक्ड। लोकेशन फ्लैश हुई डोंगरी, साउथ मुंबई। पुलिस की 2 टीम्स तुरंत वहां के लिए निकल गई, तुरंत। अब देखिए दोस्तों, किस तरीके से एक छोटी मिस्टेक्स जो 8 सेकेंड की थी, पुलिस ने उसको किस तरीके से पकड़ लिया। पुलिस की टीम वहां पे पहुंचती है, उन्हें नजर आता है एक पुरानी बिल्डिंग का 3rd फ्लोर। दरवाजा तोड़ते ही पुलिस अंदर घुसती है। रूम में 6 लैपटॉप्स, 14 हार्ड ड्राइव्स और हजारों फोल्डर्स पर इतने सारे नाम, महक, ऋतु, सना, पूजा, आयशा, निकिता, ना जाने कितने सारे नाम। इंस्पेक्टर रितिका ने धीरे से कहा, ये सिर्फ एक विक्टिम नहीं, पूरा साइबर रैकेट है। कॉर्नर में बैठा अमन शॉक में खड़ा हो गया। उसके लैपटॉप पर वही फेक ऐप का एडमिन पैनल खुला हुआ था। स्क्रीन पर लिखा था, यूजर 18,426। अब पुलिस की टीम ने पूरे साइबर रैकेट को पकड़ लिया था और वो वहीं पर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया, क्योंकि इतनी सारी लड़कियों के नाम के फोल्डर्स वहां पर मौजूद थे कि पुलिस परेशान हो गई कि अब तक कितने लोग इन लोगों का शिकार बन चुके होंगे। और इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि अरमान खुद एक प्रोग्रामर था। उसने वायरल 80s ट्रेंड देखकर फेक AI फिल्टर बनाया, इंस्टाग्राम पर एड्स चलाए, लोग खुद ऐप डाउनलोड करने लगे और परमिशन देने लगे, और परमिशन देते ही उनका डेटा ऑटोमेटिकली क्लाउड पर सेव हो जाता था, अपलोड हो जाता था। फिर AI से उन फोटोज के डीप फेक बनाए जाते थे, उनकी फैमिलीज को ब्लैकमेल किया जाता था, उनको ब्लैकमेल किया जाता था, कलीग तक फोटोज पहुंचाए जाते थे। किसी ने 5 लाख रुपए दिए, किसी ने 50,000 दिए, किसी ने 2 लाख रुपए दिए, और धीरे धीरे ये इतना बड़ा रैकेट बन चुका था कि इन्होंने लगभग करोड़ से ज्यादा रुपए लोगों से ले लिए थे। ये सारी चीजों को देखते हुए आयशा बहुत ज्यादा शॉक में थी कि मुझसे पहले भी इन लोगों ने कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है।
आयशा अपने स्कूल के ऑडिटोरियम में स्टूडेंट्स के सामने खड़ी होती है। स्क्रीन पर उसका 80s का पोर्ट्रेट था। सब स्टूडेंट मुस्कुरा रहे थे। फिर उसने अगला स्लाइड दिखाया। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, हर ब्यूटीफुल फिल्टर सेफ नहीं होता। आयशा ने इन सारी चीजों को, जिस चीजों से वो सफर कर रही थी, उसे ही उसने फिर अपना हथियार बनाया और स्कूल में सबको दिखाया, ताकि जिस चीज से या जिस प्रॉब्लम से वो गुजर गई, अब कोई और उस प्रॉब्लम से परेशान ना हो, या उस तकलीफ से, या फिर किसी और का शिकार ना बने। और अपना AI का 80s का फिल्टर दिखाते हुए आयशा कहती है कि हम पासवर्ड स्ट्रांग रखते हैं, लेकिन परमिशन बिना पढ़ते ही दे देते हैं। साइबर क्राइम हमसे हैकिंग से बचने नहीं कहता, बस वो ये कहता है कि कभी कभी या हमेशा आप किसी भी ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो उसकी परमिशंस को जरूर पढ़े कि वो ऐप आपसे क्या मांग रहा है, और बिना पढ़े परमिशन अलाउ मत कीजिए, क्योंकि आपका एक क्लिक आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। सारे बच्चों ने ये उनकी बात सुनी और जोर जोर से तालियां बजाने लगे। कुछ दिनों बाद आयशा ने अपना कॉन्फिडेंस तो वापस पा लिया और अरमान को IT एक्ट के तहत चार्जेस भी लगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी यही है कि क्या ये फिल्टर्स का बनना बंद होगा? नहीं होगा। क्या साइबर का बनना, साइबर क्राइम का होना कम होगा? नहीं होगा। फिल्टर बनते रहेंगे, क्राइम्स रेट बढ़ते रहेंगे। आज आयशा शिकार थी, कल पूजा होगी, फिर कोई कोई कोई कोई कोई कोई शिकार बनते रहेंगे। लेकिन ये कम कैसे होगा? कम होगा आपकी और हमारी समझदारी से। हम किसी भी थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल ना करके एक ऑथेंटिकेट ऐप को इंस्टॉल करें, और ऑथेंटिकेट ऐप को भी जब आप इंस्टॉल करेंगे उसकी सारी परमिशंस को पढ़िएगा, और कोई भी ऐसी परमिशन को ओके मत करिए जिससे आपकी प्राइवेसी को नुकसान पहुंच सकता है या आपकी फैमिली को नुकसान पहुंच सकता है। हम कहते हैं ना, दीवारों के भी कान होते हैं, तो हाँ, हर चीज के कान होते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा अगली कहानी लेकर। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM पर सदाबहार कहानियां, और मजे कीजिए, एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, और सबसे बड़ी चीज, सावधान रहिए। ट्रेंड बनाना जरूरी है, फोटोज बनाना जरूरी है, पर फोटोज बनाने के चक्कर में अपनी प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए।

0: शरारती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देख, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा,
0: लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्द स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो मोटिवेशन से भरपूर है, जो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे संघर्ष और संघर्ष के बाद मिली हुई जीत की कहानी है। एक ऐसी जीत की कहानी जो आपके दिल में एक ऐसा सवाल छोड़ देगी, क्या हमें सच में कोशिश कितनी करनी चाहिए, ये वाला। क्योंकि हम अक्सर कोशिश नहीं करते और हमेशा ये कहते हैं यार कर लेता तो हो जाता, लेकिन काश हम चीजें करते तो रिजल्ट कुछ और होता। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी जिसका नाम है गोल्ड मेडल। सुबह के 4 बजे थे, पूरा शहर अब भी गहरी नींद में था। गलियों में सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, लेकिन एक पतली सी गली के छोटे से घर का दरवाजा धीरे से खुला। 17 साल का अर्जुन अपने पुराने घिसे हुए रनिंग शूज पहनकर बाहर निकला। उसके शूज के सोल 2 जगह से फट चुके थे, लेस भी अलग अलग रंग की थी। उसकी माँ पीछे से बोली, बेटा रुक। अर्जुन मुड़कर देखता है, माँ एक स्टील के ग्लास में गरम गरम दूध लेकर खड़ी थी। बस इतना ही है, गर्म पी ले। अर्जुन मुस्कुरा दिया, माँ एक दिन ऐसा आएगा ना जब मैं तुझे दुनिया का सबसे महंगा दूध पिलाऊंगा। माँ हंस पड़ी, मुझे महंगा दूध नहीं चाहिए, बस तेरा नाम टीवी पर देख लूं इतना ही काफी है। ये लाइन अर्जुन के दिल में बस गई और वो दौड़ने लगा। हर सुबह 10 किलोमीटर, ना जिम, ना कोच, ना प्रोटीन, सिर्फ एक सपना, और उस सपने का नाम था गोल्ड मेडल। अर्जुन महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहता था। पापा एक ऑटो ड्राइवर थे, दिन भर मेहनत करते थे, कभी 500 रुपए तो कभी 300 रुपए कमाते थे, और कभी कभी पूरे दिन में 150 रुपए भी मिलते थे। घर में 3 लोग थे, पापा, माँ और अर्जुन। टीवी पुराना था, फ्रिज नहीं था और कूलर भी नहीं था, लेकिन घर की दीवारों पर एक फोटो जरूर लगी थी, मिल्खा सिंह की। हर रोज अर्जुन उस फोटो के सामने खड़ा होकर कहता, एक दिन मैं भी इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतूंगा। पापा हमेशा हंसते, बेटा सपना देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन पेट भी भरना पड़ता है। अर्जुन सिर्फ इतना कहता अपने पापा से, पापा एक मौका दे दीजिए और फिर देखिए। स्कूल में स्पोर्ट्स डे था, 100 मीटर रेस का कॉम्पिटिशन भी था। सब स्टूडेंट्स नए नए शूज में आए थे, किसी ने नाइकी, किसी ने एडिडास, और अर्जुन अपने फटे पुराने हुए शूज में आया। सबने शूज को देखा और अर्जुन का मजाक बनाने लगे, सब उस पर हंस पड़े। अरे देख, गोल्ड मेडल विनर आ गया, कहीं रास्ते में शूज टूट गए तो ये तो फिनिश लाइन तक भी नहीं पहुंच पाएगा। अर्जुन चुप था, सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। रेस शुरू हुई, ऑन योर मार्क सेट, और विसल बजी, सब की तीर की तरह भागने लगे। शुरू हुई 40 मीटर तक, सब तीर की तरह भागे। शुरू के 40 मीटर तक अर्जुन पीछे था, सब लोग हंस रहे थे, लेकिन आखिरी 50 मीटर में जैसे उसके पैरों में बिजली आ गई, एक एक करके सब पीछे छूट गए। और क्या, फर्स्ट पोजीशन अर्जुन, पूरा ग्राउंड तालियों से गूंज उठा। स्पोर्ट्स टीचर भी हैरान रह गए, ये लड़का कौन है। प्रिंसिपल ने मेडल पहनाया, लेकिन मेडल से ज्यादा अर्जुन को एक बात याद आ रही थी। स्पोर्ट्स टीचर ने उसे साइड में बुलाकर कहा, बेटा तेरे अंदर ना टैलेंट है, टैलेंट। पहली बार किसी को देख रहा हूं जो बिना ट्रेनिंग के इतना फास्ट भाग रहा है, कल से मेरे साथ प्रैक्टिस करेगा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, सर फीस कितनी देनी होगी। टीचर मुस्कुरा दिए, टैलेंट की कोई फीस नहीं होती बेटा, बस तू आ जाना। उस दिन से अर्जुन की असली जर्नी शुरू हुई। अगले ही सुबह 4 बजे वो प्रैक्टिस के लिए स्कूल पहुंच गया। शाम को पापा के साथ ऑटो साफ करना, रात को पढ़ाई करना, दिन के 18 घंटे मेहनत होती थी, और 1 साल बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियनशिप, ये उसकी जिंदगी की पहली सबसे बड़ी रेस थी। पूरे डिस्ट्रिक्ट के बेस्ट रनर्स आए थे, सबके पास कोच थे, डाइट था, रनिंग किट थी, और अर्जुन सिर्फ एक ट्रैक सूट जो स्पोर्ट्स सर ने अपनी सैलरी से खरीदा था। रेस के पहले सर ने कांधे पर हाथ रखा अर्जुन के और कहा, याद रख
रेस पैर नहीं जीतते, रेस हौसला जीतता है। और क्या, जैसे ही विसल बजी रेस शुरू हुई, पूरे स्टेडियम में शोर मच गया। अर्जुन ने जबरदस्त स्टार्ट लिया, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर सबसे आगे, लेकिन अचानक उसका पुराना शू फट गया, बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गया। पूरा स्टेडियम एक पल के लिए खामोश हो गया, बाकी रनर्स उसके आगे निकल गए। स्पोर्ट्स सर चीखे, अर्जुन उठ! उसके घुटने से खून निकल रहा था, दर्द बहुत था, लेकिन उसने माँ की बात याद रखी थी, मुझे बस तेरा नाम टीवी पर देखना है। अर्जुन धीरे से खड़ा हुआ और दोबारा भागना शुरू किया। अब रेस जितना मुश्किल था, लेकिन उसने गिवअप नहीं किया। फिनिश लाइन क्रॉस करते ही वो जमीन पर गिर गया। इस बार वो फर्स्ट नहीं आया, फोर्थ आया, मेडल भी नहीं मिला। रात को घर आकर वो पहली बार रोया, माँ शायद पापा सही कहते थे, ये सपना मेरे लिए नहीं है। माँ ने उसकी बात बड़ी शांति से सुनी और बाद में उसके पास बैठकर कहा,

वाला है अर्जुन की जिंदगी में, ये कौन सा तूफान है? क्या ये अर्जुन को चैंपियन बनने से रोक देगा या अर्जुन के पैर ही अर्जुन से छीन लेगा, जिससे उसकी भागने की क्षमता ही खत्म हो जाए, भागने की शक्ति खत्म हो जाए? या फिर घर की कोई ऐसी मुसीबत आ जाएगी, या फिर घर पे कोई ऐसी मुसीबत आएगी जो अर्जुन के सपने को तार तार कर देगी? ये मैं भी नहीं जानता, ये आप भी नहीं जानते। ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और मिलना पड़ेगा उस ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप सुनते रहिए आचार्य 90 FM कहानियों की वाला।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर सुना रहा था आपको गोल्ड मेडल की कहानी। अब गोल्ड मेडल में अर्जुन जो है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंपटीशन में हिस्सा लेता है और उसमें फोर्थ आता है, और वो मन ही मन सोचता है क्या उसके पिताजी सही कहते थे कि सपने देखना सही है लेकिन पेट भरना भी जरूरी है। लेकिन अर्जुन की माँ उसे हौसला देती है और कहती है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम अपनी जिद को पूरा करोगे और जीतोगे एक दिन। तो सुनते हैं कहानी का अगला हिस्सा। डिस्ट्रिक्ट रेस में हारने के बाद अर्जुन ने एक बात समझ ली थी, टैलेंट जरूरी है लेकिन टैलेंट से ज्यादा जरूरी है हिम्मत। अगले ही दिन वो सुबह 4 बजे फिर से ग्राउंड पहुंच गया। स्पोर्ट सर उसे देखकर मुस्कुरा दिए। मैं जानता था तू जरूर आएगा अर्जुन। अर्जुन ने सिर्फ इतना कहा, सर इस बार सिर्फ रेस नहीं जीतनी, जिंदगी जीतनी है। सर ने उसके कांधे पर हाथ रखा और कहा, तो फिर आज से ही असली ट्रेनिंग शुरू करते हैं। अब रूटीन और भी मुश्किल हो गया। सुबह 4 से 7 प्रैक्टिस होती, फिर स्कूल होता, शाम को पापा के साथ ऑटो चलाने में मदद होती और रात को पढ़ाई, और फिर स्ट्रेचिंग, मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन। स्पोर्ट्स सर उसे हर दिन एक ही बात बोलते, बॉडी थकने से पहले दिमाग हार मानता है अर्जुन। और अर्जुन धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट का सबसे तेज रनर बनने लगा। उसने अपने सर की कही हुई सारी बातों को तवज्जो दी, उनको मानना शुरू किया और सर की बताई हुई ट्रेनिंग से ही वो सारी चीजें करने लगा। एक दिन स्पोर्ट फेडरेशन के सेलेक्टर्स डिस्ट्रिक्ट्स में आए थे, स्टेट चैंपियनशिप के लिए ट्रायल्स होने वाले थे। ग्राउंड में 200 से ज्यादा एथलीट्स थे, सबके पास ब्रांडेड किट्स थी, न्यूट्रिशंस थे, प्रोफेशनल कोचेस थे। अर्जुन के पास सिर्फ एक पानी और माँ के हाथ के बने 2 पराठे। एक लड़के ने हंसकर कहा, भाई पिकनिक पे आया है क्या? दूसरा बोला, गोल्ड मेडल व्हाट्सएप पे मिलता है क्या? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ हेडफोन लगाए, आंखें बंद की और माँ की आवाज याद की। बस तेरा नाम टीवी पे देखना है, बस तेरा नाम टीवी पर देखना है। ट्रायल रेस शुरू हुई, विसल बजी, सब रॉकेट की तरह निकले। शुरू के 100 मीटर में अर्जुन तीसरे नंबर पे था, 150 मीटर, 200 मीटर उसने स्पीड बढ़ाई, 250 मीटर अब वो दूसरे नंबर पर जा गया, और आखिर के 100 मीटर में पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। कमेंटेटर जोर से चिल्लाए, लेन नंबर 4 अर्जुन, अनबिलीवेबल कमबैक और फर्स्ट पोजीशन। पूरा ग्राउंड तालियों से गूंज उठा। स्पोर्ट सर की आंखों में आंसू आ गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम स्टेट चैंपियनशिप के लिए सेलेक्ट हो गए। अर्जुन ने सबसे पहले माँ को फोन किया, माँ मेरा सिलेक्शन हो गया है। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही, फिर माँ रो पड़ी, बेटा आज लग रहा है कि भगवान ने मेरी सुन ली। लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। स्टेट चैंपियनशिप से सिर्फ 10 दिन पहले पापा का ऑटो एक ट्रक से टकरा गया, एक्सीडेंट हुआ, बहुत सीरियस एक्सीडेंट। पापा हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए थे, घर में 1 भी रुपया नहीं था। माँ अपनी शादी के कंगन लेकर ज्वेलर के पास गई। ज्वेलर बोला, बस इतने ही मिलेंगे। माँ चुपचाप मान गई। अर्जुन दूर से सब देखता रहा। एक दिल में तूफान चल रहा था, उसने सोचा मैं रेस छोड़ देता हूँ। स्पोर्ट्स सर को पता चला, वो सीधा हॉस्पिटल आए, पागल हो गया क्या तू, रेस छोड़ेगा? अर्जुन बोला, सर घर ज्यादा जरूरी है। सर ने गुस्से में कहा, घर के लिए ही तो भागना है, तू रेस नहीं भागेगा तो जिंदगी भर पछताएगा। पापा ने भी ऑक्सीजन मास्क के साथ धीरे से कहा, बेटा मेरे लिए मत रुक, एक दिन जब लोग मुझे गोल्ड मेडल विनर का बाप बोलेंगे ना तो मुझे और प्राउड फील होगा, तब मेरी सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी, तब मेरी सारी खुशी बस तुझ में नजर आएगी। अर्जुन टूट गया, उसने पापा का हाथ पकड़कर बोला, आप देखना पापा, मैं जीत कर ही आऊंगा। स्टेट चैंपियनशिप का दिन आ गया, हजारों लोग स्टेडियम में बैठे थे, टीवी कैमरास, मीडिया, नेशनल सेलेक्टर्स। अर्जुन पहली बार इतनी बड़ी रेस में हिस्सा ले रहा था, उसके पैर कांप रहे थे,
सर ने उसे एक छोटा सा तिरंगा दिया और कहा, इसे पॉकेट में रख, जब डर लगे याद रख तू अकेला नहीं भाग रहा, पूरा भारत देश तेरे साथ भाग रहा है। रेस शुरू हुई, सब एथलीट बहुत स्ट्रांग थे। 200 मीटर तक अर्जुन पीछे था। कमेंटेटर बोला, लगता है प्रेशर में आ गया, लेकिन आखिरी बेंड पर उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, 1, 2, 3 रनर्स को पीछे छोड़ दिए। फर्स्ट लाइन में और फोटो फिनिश में पूरे स्टेडियम की नजर थी, सांसें रुक गई। रिजल्ट आया, विनर अर्जुन, स्टेट चैंपियन, नेशनल्स गेम के लिए सिलेक्ट। मीडिया उसके पास दौड़ पड़ी, अर्जुन आप अपनी जीत किसे डेडिकेट करना चाहोगे? अर्जुन ने कैमरा की तरफ देखा और कहा, ये मेडल मेरी मां के बेचे हुए कंगन का नतीजा है। मेरे पापा का खून पसीने की कमाई है और मेरे स्पोर्ट्स सर के भरोसे का मेडल है। पूरा स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजाने लगा। लेकिन नेशनल गेम से सिर्फ 1 महीने पहले प्रैक्टिस के दौरान अर्जुन के पैर में चोट बुरी तरह लग गई। एक डॉक्टर ने सीधा कह दिया, हो सकता है तुम दोबारा कभी रेस नहीं भाग पाओगे। और ये सुनते ही अर्जुन के पैर की जमीन खिसक गई। अब आगे क्या होगा? क्या अर्जुन दोबारा रेस भाग पाएगा, या फिर अर्जुन को रेस छोड़नी पड़ेगी, या फिर कोई और नया मोड़ आएगा कहानी में? मैं नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, हम दोनों नहीं जानते कि आगे कहानी में क्या होगा। पर इतना जरूर जानता हूं कि जो हौसला रखते हैं, जिनके अंदर जिद होती है और जो हर एक चीज को पूरा करने के लिए दिलो जान से मेहनत करते हैं, उनका सपना कभी खाली नहीं जाता, उनका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो देखेंगे अर्जुन का परिश्रम इस छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त, मिलता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: जाहिर कुछ नेहा। हाजरी ने मैं मेरा साथ दी, संतरों से घूम के जब मैं मुखड़े पे आऊं तो मेरे साथ गाइए।
1: अरे देव साहब, पहले आपके नाम आपकी सेहत पर एक गम हो जाए।
2: हाँ हो जाए, हो जाए, हो जाए।
0: जी मैं शराब नहीं छूता।
1: कौन काफिर छूने को कहता है, बगैर हाथ लगाए चढ़ा जाओ एक ही सांस में।
3: तो लाइए देव साहब, हम ही आपके होंठों पे लगाए देते हैं।
4: पी भी लीजिए देव साहब, बड़ी देर से छलक रहा है वरना दुख हो।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज ये 26 स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। जैसे कि हम जान रहे हैं, अर्जुन एक रेस हारा, फिर उसने अपनी कोशिश जारी रखी, उसे सर मिले, सर के साथ उसने प्रैक्टिस की, फिर एक कंपटीशन गया, उस कंपटीशन को उसने जीता, लेकिन वो वहीं तक नहीं रुका, उसकी जिद काफी बड़ी थी। उसके माँ का जो सपना था उसे वो पूरा करना था, और अर्जुन उस सपने को पूरा करने के लिए हर एक वो काम कर रहा था जो उसे करना चाहिए था। अर्जुन कभी पीछे नहीं हटा, अर्जुन ने बस यही कोशिश की कि वो किस तरीके से अपने माँ के सपने को जिंदा रखे और अपने माँ के सपने को पूरा करे। तो चलिए देखते हैं अब कहानी का आखिरी हिस्सा। डॉक्टर्स की बात अभी भी अर्जुन के कानों में गूंज रही थी। लिगामेंट टियर हो चुका था, अगर जल्दी रेस भागे तो करियर हमेशा के लिए खत्म हो सकता था। एक पल के लिए सब कुछ खत्म सा लगने लगा था। नेशनल गेम्स सिर्फ एक महीने दूर थे। जिस सपने के लिए उसने सालों तक पसीना बहाया, वही सपना उसके हाथों से अब दूर जा रहा था, फिसल रहा था। उस रात अर्जुन ने पहली बार भगवान से शिकायत की, मैं ही क्यों, आखिर मेरी क्या ही गलती है, मैं तो सिर्फ अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना चाहता था, तो मेरे साथ ही ये क्यों। उसकी मां चुपचाप उसके पास बैठी रही। कुछ देर बाद उसने सिर्फ एक बात कही, बेटा भगवान कभी किसी का सपना नहीं तोड़ते, वो सिर्फ देखते हैं सपना देखने वाला कितना मजबूत है, और अगर तुम मजबूत हो तो जरूर तुम ये अपनी परेशानी अपनी कठिनाई को पार कर जाओगे। और उसके बाद अगले एक महीने रेस से ज्यादा मुश्किल था। पेन, फिजियोथेरेपी, आइस पैक्स, एक्सरसाइज, हर दिन दर्द, कभी घुटना जवाब दे देता, कभी कॉन्फिडेंस, और क्या, सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो रहा था। लेकिन स्पोर्ट्स सर हर रोज बस उसे एक ही बात बोलते, गोल्ड मेडल ट्रैक पर नहीं जीता जाता, गोल्ड मेडल पहले दिमाग में जीता जाता है और उसके बाद गोल्ड मेडल मिल जाता है। अर्जुन मेडिटेशन करता, विजुअलाइजेशन करता, हर रात आंखें बंद करके फिनिश लाइन इमेजिन करता, और हर बार उसके सामने तिरंगा लहराता और खुद को देखता। अब धीरे धीरे एक महीना गुजर चुका था, नेशनल गेम्स अब आने ही वाले थे, और आखिरकार नेशनल गेम्स वाला दिन आ गया। देश के हर स्टेट के चैंपियंस एक ही स्टेडियम में खड़े थे। कमेंटेटर की आवाज पूरे स्टेडियम में गूंज रही थी, आज का 400 मीटर का फाइनल रेस, यहाँ से निकलेगा भारत का अगला चैंपियन। स्टैंड में हजारों लोग, टीवी कैमरास, मीडिया, और वीआईपी गैलरी में अर्जुन के पापा, जो एक्सीडेंट के बाद पहली बार व्हीलचेयर पर स्टेडियम आए थे। उनके पास माँ बैठी थी। माँ ने धीरे से कहा, देखो हमारा बेटा, देखो। पापा की आंखों में आंसू आ गए, और क्या, रेस शुरू हुई। ऑन योर मार्क्स सेट एंड विसल बजी। सब एथलीट्स बिजली की तरह निकल पड़े। 100 मीटर, अर्जुन चौथे नंबर पर था। कमेंटेटर्स बोला, अर्जुन स्लो स्टार्ट ले रहा है। 200 मीटर अब तीसरे नंबर पर। स्पोर्ट्स सर चिल्लाए, पेशेंस, 300 मीटर अब तीसरे नंबर पर। लेकिन उसके इंजर्ड पैर में हल्का सा दर्द शुरू हुआ। एक सेकंड के लिए उसका बैलेंस ही हिल गया। उसके दिमाग में डॉक्टर की बात गूंज रही थी, करियर खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी पल उसने वीआईपी गैलरी की तरफ देखी। पापा व्हीलचेयर पर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे, माँ हाथ जोड़कर दुआ कर रही थी, स्पोर्ट्स सर दोनों हाथ हवा में उठाकर चिल्लाए, और इतने जोर से चिल्लाए, अर्जुन तिरंगे के लिए जीतना है। बस ये कुछ शब्द सुनते ही जैसे अर्जुन के अंदर एक रोशनी दौड़ पड़ी। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, एक रनर क्रॉस किया, फिर दूसरा। अब सिर्फ उसके आगे दो एथलीट बचे थे। आखिरी 50 मीटर
पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। कमेंटेटर चीख रहे थे, अनबिलीवेबल कमबैक, ऐसा फिनिश बहुत कम देखने को मिलता है, और आखिरी के 20 मीटर में तो पूछिए ही मत। दोनों रनर्स खड़े हो गए, कांधे से कांधा मिलाकर भाग रहे थे। 10 मीटर, 5 मीटर और क्या, फिनिश लाइन और फोटो फिनिश, और पूरा स्टेडियम खामोश, सबकी नजरें स्कोर बोर्ड पर थी। कुछ सेकंड जो अर्जुन को घंटों जैसे लग रहे थे, फिर स्क्रीन पर रिजल्ट फ्लैश हुआ, गोल्ड मेडलिस्ट अर्जुन। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा, नेशनल एंथम बजना शुरू हुआ। अर्जुन पोडियम पर खड़ा था, उसके खांधों पर तिरंगा था, गोल्ड मेडल उसके गले में था। जैसे ही तिरंगा सबसे ऊपर गया, अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने मेडल को चूमा और धीरे से कहा, ये मेडल सिर्फ मेरा नहीं है, ये मेरी माँ का सेक्रीफाइस है, पापा की मेहनत है और स्पोर्ट सर के भरोसे का नतीजा है, और हर उस इंसान का है जैसे जिसे कभी लोगों ने कहा था तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन उसने वो

कर दिखाया। अब एक अनोखा फैसला आरव ने अब एक अनोखा फैसला आने ही वाला था कि अर्जुन ने अवार्ड सेरेमनी के बाद मीडिया से पूछा अर्जुन अब आपका अगला सपना क्या है? सबको लगा वो ओलंपिक्स बोलेगा, लेकिन अर्जुन मुस्कुराकर बोला, मैं ओलंपिक्स जरूर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने गांव में एक फ्री स्पोर्ट्स एकेडमी बनाऊंगा ताकि किसी और बच्चे को फटे हुए शूज की वजह से सपना ना छोड़ना पड़े। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। 5 साल बाद जहां कभी अर्जुन अकेला सुबह 4 बजे दौड़ता था, आज वहीं 300 से ज्यादा बच्चे हर सुबह 4:30 बजे दौड़ते हैं। गेट पर बड़ा सा बोर्ड लगा था और उस पर लिखा था अर्जुन गोल्ड मेडल स्पोर्ट्स एकेडमी, और उसके नीचे एक लाइन लिखी थी, जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मान लेने वालों की कभी जीत नहीं होती। एक छोटा सा लड़का अर्जुन, जिसके पास सिर्फ एक सपना था, लेकिन उसके पास वो मेहनत, वो जिद, वो लगन थी, और उसी जीत के चलते, उसी मेहनत के चलते उसने अपना वो सपना पूरा किया। उसने वो गोल्ड मेडल जीता, उसने अपना हौसला बुलंद किया, और उसके गोल्ड मेडल जीतने के बाद उस पूरे शहर में, उस पूरे मोहल्ले में इतने स्टूडेंट्स अब रेस में और अलग अलग तरह के खेलों में हिस्सा लेने लगे जिसकी शायद ही कभी किसी ने कल्पना की हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM पर कहानियों की गुल्लक। मैं आपसे कहता हूँ टाटा, बाय बाय, टेक केयर।

0: नमस्ते दर्शकों, आज हम सेलिब्रिटी शो में हमने आमंत्रित किया है नीलम गोयल जी को। नीलम जी नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: आपका स्टूडियो में भी स्वागत है और हमारे आचार्य 90 FM पे स्वागत है और सेलिब्रिटी शो में भी आपका स्वागत है। नीलम जी गोयल एक स्नातक, आगरा यूनिवर्सिटी की स्नातक रही है और कुकिंग क्लासेस, लिखना पढ़ना, समाज सेवा, सोशल वर्क, इन स्लम एरिया इनका कार्य रहा है। काउंसलिंग फॉर कैंसर पेशेंट्स, लोगों से मिलना और मुक्त छंद की कविताएं लिखती है, कृष्ण के भजन गाती है और आखर मुक्ता साहित्यिक पत्रिका में स्वरचित कविताओं का उनका गीत का छपना हुआ है। कहे अनकहे शब्दों का कैनवास इस कहानी संग्रह में स्वयं रचित कहानी मुट्ठी भर सपने का भी छपना हुआ है। साहित्यिक प्रतियोगिताओं में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित 21 सर्वश्रेष्ठ कहानियां पत्रिका को उन्होंने जीता है और पतंजलि योग पीठ से प्रमाणित योग शिक्षिका भी रह चुकी है। बहुत सारे ये सब आप वही पूछना चाहूंगी, इतना सारा आप व्यस्त रहती है, पूरा 24 घंटे भी आपको कम पढ़ते रहेंगे, तो ये सब आप मैनेज कैसे करती है वो शुरू में ही करना?
1: बस मेरे को ना कुछ है कि मुझे कुछ ना कुछ करते रहना है
0: जी।
1: और इन सब चीजों से मैं बचपन से थोड़ी प्रेरित रही हूँ, क्रिएटिव मैं शुरू से ही थी
0: जी।
1: और ये जो पढ़ने का शौक मुझे लगा वो मेरी मदर से लगा।
0: अच्छा।
1: क्योंकि वो उस समय भी ना ये कौन कौन सी पुस्तिकाएं होती थी, धर्मयोग।
0: हाँ।
1: और ये कादम्बिनी, इस तरह की मतलब हाई लेवल

0: बुक्स पढ़ती थी, वो 12th पास थी उस समय की,
1: हाँ.
0: लेकिन कोई जॉब नहीं किया था,
1: हाँ.
0: तो बस मुझे वो उनको पढ़ते देखती थी और धीरे धीरे धीरे धीरे मेरे को रीडिंग करने की जो मिल जाता था घर में, कोई भी पत्रिका अखबार मतलब जो भी मिल गया, हाँ. वो मुझे उसको पढ़ना है.
1: वाह, वेरी नाइस. आपके साहित्य के बारे में हमें बहुत कुछ जानना है, लेकिन आप कविताएं जैसे हमारी पहली मुलाकात में आप मुझे जान गई थी, आप बहुत कथा सुंदर से प्रस्तुत करते हैं, कविताएं भी लिखती हैं, तो जाहिर सी बात है अभी आपने माँ का जिक्र किया तो हमारी सबकी शुरुआत तो माँ से ही होती है, तो माँ के ऊपर आपने जो कविता लिखी है वो हमें सुनाइए प्लीज.
0: सबका धन्यवाद, नमस्ते. माँ केवल एक शब्द ही नहीं है, माँ बल्कि असीम शक्ति, ममता और आस्था का स्वरूप है. जब जीवन में अंधेरा छा जाता है तो माँ का नाम ही एक दीपक बनकर हमारे जीवन में उजाला करता है और रास्ता दिखाता है. आज उसी जगत जननी शक्ति स्वरूपा माँ के चरणों में, श्री चरणों में अपनी भावनाओं का ये छोटा सा भजन अर्पित करने जा रही हूँ. श्रद्धा भक्ति के साथ आप सब जुड़िए. पधारो माँ पूजा को, पधारो मा...

0: क्या बात है, वेरी नाइस। जय माता दी। मेरा मन तो गंगा मैया के यहाँ पहुंच गया वाराणसी में, क्योंकि कितनी सुंदर, मतलब हम वो गंगा मैया को माँ कहते, पुकार के बुलाते हैं, और जो गंगा आरती का जो विलोभनीय दृश्य हमें अभी आपकी ये कविता में, ये पद में साकार हुआ, वेरी नाइस, वेरी, मतलब वेरी टचिंग। अभी शुरू करते हैं कि आपका जो साहित्य प्रवास है, आपने जैसे बोला कि माँ बहुत बुक्स घर में रहते थे, तो आप पढ़ते गए मतलब जो शैक्षणिक, जो भी हमारा स्कूल का पढ़ना रहता है वो अलग, और आपको हिंदी में ज़्यादा रुचि है, तो आपने बीए इन हिंदी भी वैसे किया है, तो हिंदी के प्रति लगाव या फिर आस्था, आपको कौन से लेखक पसंद है हिंदी के, उसके बारे में और क्यों पसंद है?
1: मेरे को मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ बहुत पसंद हैं
0: जी,
1: और रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानियाँ बहुत, क्योंकि ये ना हमारे आसपास जो दिखता है उन सब से जुड़ी हुई है, सामाजिक समस्याएं, स्त्री की समस्याएं, और समाज में जितनी भी व्यभिचार या जितना उत्पीड़न होता है, तो उन सब के ऊपर जो कहानियाँ लिखी है, तो मुझे वो बहुत टचिंग
0: लगती है,
1: भावपूर्ण होती है, और मेरे को ना कहीं गहर तक, ऐसे ही ना क्या हुआ, कभी मैंने कहीं किसी से कुछ सुना, मेरी बड़ी दीदी है,
0: हाँ।
1: तो वो भी साहित्यिक में बहुत
0: अच्छा
1: पहुंची हुई है, बहुत ज्यादा, हाँ
0: अच्छा।
1: तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मेरे को उसमें मैं लिखने लगी, लिखते लिखते क्या हुआ,
0: हाँ।
1: जुहू में रहते थे हम लोग, तो वहाँ कृष्ण मंदिर था
0: जी,
1: वॉकिंग डिस्टेंस पे,
0: हाँ।
1: तो मैं सडनली मैंने सोच लिया था कि मैं वहाँ जाके पहले दर्शन करके फिर ही नाश्ता किया करूंगी,
0: हाँ।
1: वहाँ जाके जब मैं पिन ड्रॉप साइलेंस होकर शांति के साथ जब बैठती थी ना,
0: हाँ।
1: तो बस भगवान का चेहरा देखती थी, तो उस चेहरे को देखकर मेरे को अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो मैं जब उनको देखती थी ना, तो मेरे को रोना आता था,
0: अच्छा।
1: और रोते रोते धीरे धीरे धीरे धीरे वो भाव उत्पन्न होने लगा,
0: हाँ।
1: और पता लगा मैं तो वहाँ बैठे बैठे मोबाइल में ही उस समय जो आता था उस समय लिखती थी,
0: अच्छा।
1: फिर घर आकर जब उनको सुनाती थी तो सबको बहुत अच्छा लगता था, मुझे भी लगता था ये कैसे लिखा गया,
0: हाँ।
1: मतलब मुझे ऐसा लगता था जैसे किसी और ने लिखा है
0: जी।
1: फिर वो लिखने लगी, फिर धीरे धीरे मैं फिर उस स्पिरिचुअल ग्रुप से जुड़ी,
0: अच्छा।
1: फेसबुक पर अब उसमें जो था मैं अपनी ये रचनाएं डालने लगी, तो मोस्टली मैं तब कृष्णा के लिए ही लिखती थी,
0: अच्छा।
1: लिखते लिखते फिर धीरे धीरे कुछ और भी भाव होने लगा, जैसे मैं कभी गार्डन में गई,
0: हाँ।
1: तो दो तीन लेडीज जैसे बैठी हुई थी वहाँ,
0: हाँ।
1: तो वो बहुत परेशान, उन्होंने अपनी कुछ स्टोरी बताई,
0: हाँ।
1: तो मतलब मैं भी सेंट्री हो जाती थी कुछ, मैं भी ना ऐसी हूँ कि जल्दी मेरे भाव को छू जाती है किसी की बात में, तो उन्होंने जब वो सुनाती थी तो मुझे लगता था कि मुझे इनके लिए कुछ लिखना चाहिए, तो मैं उसी के ऊपर अपने शब्दों में स्टोरी लिखती थी, और वो जो स्टोरी सबको सुनाती थी ना, तो सबको अच्छी लगती थी,
0: हाँ।
1: बस मेरा इंटरेस्ट वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, फिर मैं साहित्यिक ग्रुप से जुड़ी, उसमें अपना आंगना करके मेरा साहित्यिक ग्रुप है,
0: अच्छा।
1: उसमें हम लोग सीखने सिखाने का रखते हैं, जैसे कि दोहा है, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी उसमें, फिर जैसे दोहा है, छंद है, मुक्तक है, कविता तो मैं छंद मुक्ति लिखती हूँ,
0: अच्छा।
1: बस इस तरह से मेरा धीरे धीरे लिखने का शौक बढ़ता चला गया
0: जी। आपसे ऐसी बातचीत हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप सुनते रहिएगा आचार्य 90 FM, और आज हमारे सेलिब्रिटी शो में हमारे साथ जुड़ी है नीलम गोयल जी, जो हिंदी की साहित्यिक है, हिंदी की स्नातक है, और आप सुनते रहिएगा आचार्य 90 FM ओनली।

0: ब्रेक के बाद आप सभी से जुड़ रहे हैं सेलिब्रिटी शो में। हमारे साथ आज की सेलिब्रिटी है नीलम गोयल मैडम, और जो हमें बहुत कुछ आज कथाएं सुनवाने वाली है, कविताएं सुनवाने वाली है। मैडम आप मतलब हम सब लेडीज़ हैं, तो हमारी हमें डेली परेशानियां होती है, घर का भी देखना पड़ता है, और जो नौकरी व्यवसाय कर रहे हैं वो भी वहाँ पे मतलब बच्चों का देखना, घर का देखना और ऑफिस का भी काम देखना, दोनों स्तर पर हम लोग काम करते हैं, लेकिन बेटियों को वो स्थान नहीं मिलता जो आज के समाज में मिलना चाहिए, उसकी ज़रूरत है। और उसके ऊपर जो आप मैंने आपकी सुनी है वो कविता मुझे बहुत पसंद है, तो मैं चाहती हूँ हमारे आचार्य 90 FM के दर्शकों को भी वो सुनवाएं। तो ज़रूर आपने वो आप बेटी के दर्द दुख को समझती है और उसके बारे में आपने लिखा है, तो वो ज़रूर हमें सुनवाइए।
1: सच बात है कि हमारे समाज में आज भी बेटियां बहुत कुछ आगे कर रही हैं
0: जी,
1: लेकिन ना फिर भी कहीं ना कहीं उनको उनका दमन होता है
0: जी,
1: कहीं ना कहीं उनको रोका जाता है और वो अपनी इच्छाओं से हर कुछ नहीं कर पाती हैं
0: जी।
1: तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बेटी केवल एक शब्द नहीं है, ये एक एहसास है और एक ऐसा प्यारा रिश्ता है जो जन्म से पहले ही दिलों से जुड़ जाता है। आज मैं उसी अनमोल रिश्ते बेटी पर अपनी भावनाएं प्रस्तुत करती हूँ। बेटी ईश्वर की सबसे सुंदर रचना, जिसकी हंसी से घर आंगन में बसंत उतर आता है।
0: क्या बात,
1: उसकी हंसी में ही संसार की रौनक बसती है और जिसकी आंखों में भविष्य के अनगिनत सपनों की किरणें झिलमिलाती हैं। वो केवल किसी घर की लाडली ही नहीं है केवल, बल्कि हर समाज की वो आत्मा है, हर संस्कृति की पहचान है। बेटी के रूप में ही संवेदना जन्म लेती है और ममता अपना अर्थ पाती है और भविष्य अपनी दिशा।
0: क्या
1: आज बेटी दिवस पर हमें ये स्मरण करना है कि बेटी का सम्मान केवल एक दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि जीवन भर निभाया जाने वाला वो संस्कार है। हर बेटी को पढ़ने का, लिखने का, अपनी इच्छा से उड़ने का, स्वयं को पहचानने का अधिकार है
0: जी।
1: क्योंकि जब एक बेटी आगे बढ़ती है तो एक पूरा युग प्रकाशमान होता है
0: जी। बिल्कुल,
1: आज की बेटी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, विज्ञान में, साहित्य में, खेल में, राजनीति में, पाक कला में, मतलब कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जहाँ वो पहुंची नहीं है
0: जी।
1: हर जगह उसने अपनी पहचान बनाई है, की उड़ान आसमानों को छू रही है, परंतु विडम्बना ये है कि कुछ स्थानों पर आज भी बेटी के साथ भेदभाव, अत्याचार और शोषण का सामना उसको करना ही पड़ता है
0: जी।
1: ये सब हमें झकझोरता है, मन को परेशान कर देता है और सोचने के लिए विवश करता है और हमें सजग भी करता है
0: जी।
1: कि कोई भी बेटी अब भय और अन्याय की छाया में ना रहे, बेटी का सम्मान, सुरक्षा, उसकी देखभाल, स्वावलंबन और हमारा नैतिक, सामाजिक, मानवीय दायित्व तो है कि बेटी आस्था भी है, प्रेरणा भी है, उससे ही धरती की मुस्कान जीवित है। इसलिए बेटी केवल उत्सव नहीं, एक चेतना है, एक संकल्प है। बेटी पर कुछ पंक्तियां लिखने का प्रयास किया है जो आपसे साझा करती हूँ। नन्ही सी हंसी में उजियारा बसे, हर सपने में उसका बसे, न रोको उड़ाने, न रोको उड़ाने ये फलक छूले, न रोको उड़ाने ये फलक छूले, हर बेटी में ही तो सारा जहां बसे। बेटी मुस्कान है, बेटी अरमान है, जीवन की हर राह में वरदान है। आओ प्रण करें आज हम सभी, हर बालिका का सम्मान हमारा मान।
0: वाह, यस, वेरी नाइस। अभी ये कविता है तो हम सुन रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप कथाएं भी लिखती हैं, तो आपकी कथा कहाँ और कथा और कविता कहाँ कहाँ प्रस्तुत करती हैं?
1: कथाएं और कविता, ये हमारा एक साहित्यिक ग्रुप है, उसमें हाँ, भेजती हूँ, कुछ किताबों में भी छपती हूँ। और मैं बहुत पहले जब मैं शादी होकर ही आई थी
0: हाँ,
1: तो वहाँ हम लोग होली का
0: त्योहार
1: मनाते थे
0: जी।
1: होली के बाद हमारे यहाँ 8 दिन तक ये लेडीज को बुलाना और
0: अच्छा,
1: खिलाना पिलाना उस सब मनाते थे, जिसको जो रुचि होती थी वो आपस में
0: हाँ,
1: शेयर करता था
0: हाँ।
1: तो इसी तरह से एक बार हमने बुलाया हुआ था सबको
0: हाँ,
1: और मैंने उन्हीं लेडीज के ऊपर एक कुछ छोटी सी कहानी
0: अच्छा
1: सुनाई और वो मेरी फिर अमर उजाला अखबार में
0: क्या बात
1: निकली।
0: है हाँ।
1: निकली तो फिर लोगों को पता लगा कि आप लिखती भी हो। क्या होता है ना, हम लिखते तो हैं
0: हाँ।
1: लेकिन हमारी जो हमें उत्साह जो मिलता है वो औरों से मिलता है
0: जी,
1: जो पढ़ते हैं
0: हाँ।
1: जब हमारा उत्साह वर्धन होता है ना तो हमारा और इच्छा करती है हाँ शायद हमने कुछ अच्छा लिखा,
0: अच्छा
1: है,
0: लिखा है
1: कुछ और इससे भी अच्छा करके दे।
0: हाँ।
1: तो बस इसी तरह से धीरे धीरे धीरे धीरे मेरा लिखने का शौक बना। फिर और मैं जिस परिवार में से दूसरे परिवार में गई थी तो वहाँ का माहौल बिल्कुल अपोजिट था। तो वहाँ क्या होता था मतलब बहुत सिंपल बहुत अच्छे लोग हैं हमारे
0: हाँ।
1: वो भी, लेकिन जो रहन सहन और जो ख्याल थे वो थोड़े अलग थे
0: जी।
1: मतलब इतना डिफरेंस था कि मेरे को वो लोग बिलायती बहू कहने लगे।
0: अच्छा।
1: पर एक समय ऐसा आया कि जब उन्होंने मेरे विचारों को सुनते थे
0: हाँ।
1: मेरी सेवा को देखते थे तो धीरे धीरे मेरी उन्होंने लिखी हुई चीजें भी पढ़ते थे तो उनको उन्होंने फिर मतलब इतना मान सम्मान दिया कि जो मेरे बड़े लोग थे ना
0: हाँ।
1: वो भी मेरे को ऐसे इनवाइट करते थे, मैं आपको वो किस्से में बता नहीं सकती कि वो सबके बीच में मेरे को किस तरह से खड़ा करके फिर मेरा बताते थे लोगों को।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो इस तरह से मेरा उत्साह वर्धन बहुत हुआ
0: हाँ।
1: फिर मैंने साहित्यिक ग्रुप से जुड़ी तो उसमें लिखना शुरू किया
0: जी।
1: तो एक बार मैंने अपनी फ्रेंड के ऊपर संस्मरण लिखा, जब संस्मरण लिखा तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा और बोले ये तो मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैं पढ़ रही हूँ तो जैसे मैं सामने रेखा चित्र कर दिया हो ऐसा लग रहा है। तो उससे मैं बहुत प्रेरित हुई, उत्साह वर्धन हुआ। फिर उन्होंने एक बोले कि आपको कहानियां लिखनी है
0: जी।
1: मैंने कहा मैंने ऐसी कहानियां नहीं लिखी है
0: हाँ।
1: तो बोलते हैं कि नहीं नहीं आप कोशिश कीजिए आप लिखोगी आप लिख सकते हो
0: जी।
1: फिर मैंने दो कहानियां लिखी जिसमें से एक मेरी पास हुई और उन्होंने इस कहे अनकहे
0: हाँ।
1: शब्दों के कैनवास में
0: अच्छा
1: छपी
0: छपी हाँ।
1: इससे पहले क्या था ना छोटी छोटी बुक्स में

0: छोटे उसमें निकल रही थी, एक जैसे ये है आखर लुकता, इसमें ये वर्ष में तीन निकलती थी।
1: अच्छा,
0: तो उसमें एक बार एक कविता निकली, एक बार वो मेरी कहानी निकली, बस उससे मैं प्रेरित हुई और फिर मैंने लिखना शुरू किया।
1: अभी आप सामाजिक कार्य से भी जुड़े हैं, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि आप कैंसर पेशेंट से ज्यादा मतलब उनसे ज्यादा मिलते हैं, तो वो सामाजिक कार्य की रुचि आपने कैसे?
0: वो क्या था ना, मेरे अंदर ना ये शुरू से सेवा का भाव था।
1: अच्छा,
0: जब मैंने ग्रेजुएशन करके छुट्टी, तो एक महीने की छुट्टी थी
1: जी,
0: और शायद मेरी को देखने वाले भी कुछ लोग आने वाले थे घर पर। तो उस बीच मैंने घर में कहा कि अभी तो मुझे शादी नहीं करनी है, मेरे को जो है
1: पढ़ना है,
0: लॉ करना है।
1: अच्छा,
0: मुझे आगे लॉ करना है।
1: हाँ।
0: तो सब लोग बोले कि हाँ हाँ हो गया लॉ, सब हो गया।
1: अच्छा,
0: बस अब क्या और क्या करना है? मैंने कहा मेरे को अच्छा स्कूल में टीचिंग करनी है।
1: अच्छा,
0: तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा विदाउट पे करनी है। तो पास में एक स्कूल था छोटा सा, और उसमें मैं जाने लगी, मैंने पढ़ाया। उसमें जो था एक बच्चा भी था, वो धीरे धीरे मुझसे बहुत अटैच हो गया और बोला दीदी मैं आपसे और भी पढ़ना चाहता। मैंने कहा ठीक है तुम घर आ जाए करो।
1: अच्छा,
0: वो घर आने लगा, मैंने उसको पढ़ाया।
1: हाँ।
0: उसका नंबर्स बहुत अच्छे आए।
1: हाँ।
0: कुछ नहीं, वो हो गया, मेरी शादी भी हो गई।
1: हाँ।
0: 25 साल बाद मेरे पास कॉल आती है उसकी।
1: अच्छा,
0: कि हेलो दीदी बोल रही है। मैंने कहा आप कौन बोल रहे हैं? मैं राजू बोल रहा हूँ। मैंने कौन राजू? अरे दीदी आप भूल गई, मैं वही राजू हूँ जिसको आपने घर पे बैठ के पढ़ाती थी यार।
1: अच्छा।
0: आज मैं इस पोस्ट पर हूँ, आया है, नौकरी कर रहा हूँ, बेंगलोर में हूँ।
1: क्या बात है,
0: मतलब मैं वो पढ़ी थी उस समय खुशी की वजह से।
1: हाँ।
0: तो ये मेरे को ना शुरू से था।
1: हाँ।
0: और इसके बाद फिर मेरी जब शादी हो गई, तो एक पास में एक दूध जिनके यहाँ से आता था।
1: हाँ।
0: जैन मंदिर के बराबर में उनकी दूध का गाय वगैरह रखते थे, तो वो जब लेते थे उनसे। तो उसके एक भाई की ना डेथ हो गई थी, उसके बच्चे थे, तो वो परेशान थे और मुझे लगता था शायद अभी इनके घर वाले इन बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे।
1: हाँ।
0: तो मैंने उनको बोला मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, मेरे दो बच्चे हो चुके थे तब तक।
1: हाँ।
0: कि वो चले जाते हैं, तुम इस बीच आ जाए करो, मैं काम निपटा के 11 बजे करीब तुमको टाइम दूंगी।
1: अच्छा,
0: उसको इतना अच्छा पढ़ना आ गया।
1: हाँ।
0: कि उसने 12th पास किया।
1: क्या बात है।
0: और मतलब वो अपनी लाइफ में शादीवादी हो गई, सेट हो गई। तो मुझे ये शुरू से कुछ आदत थी। अब यहाँ जब इन्होंने VRS लिया बैंक से, स्टेट बैंक में मेरे हस्बैंड
1: काम करते थे।
0: हाँ, तो जब इन्होंने VRS लिया तो सब लोग बोले कि अरे ये इतने वो ले रहे हैं और आप परेशान हो जाओगी।
1: हाँ।
0: घर में रह के क्या करोगी, ये सारे दिन चाय बनवाएंगे और कॉफी बनवाएंगे, सारे दिन तुम बिजी रहोगी, परेशान हो जाओ। मैंने कब जो होगा, मैंने उनको समझा लिया अगर वो इसमें खुश है VRS लेने में तो मुझे कोई हर्ज नहीं है। तो उन्होंने जब लिया तो यही लगा कि अब हम क्या करें।
1: हाँ।
0: क्योंकि टाइम एक्सेस में रहता था, सुबह सुबह टिफिन बना के नहीं देना और
1: बराबर,
0: बच्चे भी बड़े हो गए, अपनी नौकरी में चले गए थे बच्चे। तो ये जो राम मंदिर का ये जब हुआ, तो प्रसाद देने कुछ लोग घर पर आए, जब घर पर आए तो मैं हमने उनकी आरती उतारी।
1: अच्छा,
0: आरती उतारी और घर पे बिठा के उनको पानी वानी देने के लिए कहा, तो वो बहुत खुश हुए, RSS के लोग थे। जब वो उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन बाद उनका कॉल आया कि ऐसे ऐसे आप लोग उससे जुड़िए।
1: हाँ।
0: मैंने कहा ठीक है जुड़ेंगे, आप लोग पहले घर पर आओ। ये हमको पता था कि RSS के लोगों को घर पे बुलाना चाहिए।
1: जी।
0: तो वो लोग धीरे धीरे हमारे यहाँ आने लगे, कभी लंच पर, कभी ब्रेकफास्ट पर।
1: जी।
0: उन्होंने कहा, मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा मेरे को ना कुछ करने का मन करता है अभी।
1: हाँ।
0: ऐसा लगता है मैं अभी कुछ कर नहीं रही, बेकार हूँ। तो वो बोले ठीक है आप ऐसे ऐसे करके आइए हनुमान टेकड़ी पर, साइन पोड़ीवारा में, वहाँ कैंसर पेशेंट्स का है, और आप आइए वहाँ, आइए आपको अच्छा लगेगा, फिर आपको जिम्मेदारी देंगे।
1: ठीक है।
0: वहाँ गए, वहाँ गए तो क्या हुआ, वहाँ पेशेंट्स से मैं सबसे मिलने जाती थी, फिर उन्होंने एक रूम का मेरे को चार्ज दे दिया।
1: अच्छा,
0: कि आप इन लोगों से कॉन्टेक्ट में रहिए, देखिए इनपे क्या चीज है, इनको मेंटली सपोर्ट कीजिए। तो हम उनसे जाके कभी कभी उनको भजन सुनाती थी, कभी उनसे बात करती थी, क्योंकि क्या
1: बात करने से भी वो खुल जाते हैं,
0: क्योंकि क्या है ना
1: इमोशनली अच्छे रहते हैं।
0: क्या है ना, पेशेंट्स जो है मुझे लगता है कि वो
1: डिप्रेशन में
0: से नहीं जाता।
1: हाँ।
0: वो सोच कर चला जाता
1: है जी।
0: फिर हम लोग की एनकोलॉजी को लेकर क्लासेस हुई, ट्रेनिंग हुई हमारी, तीन तीन दिन की क्लास चलती थी कि उनको साथ हम लोग को कैसे बिहेव करना है, कैसे नहीं करना है, क्या उनके सामने नहीं कहना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता। कुछ दिन तो क्या हुआ, जब हम घर आते थे ना तो मैं सो नहीं पाती थी।
1: हाँ, उनका दुख दर्द देख
0: सो नहीं पाती थी। तो ये भी समझाते थे उन लोगों ने समझाया, देखो ऐसे सेवा नहीं हो सकती है, आपको यही छोड़कर जाना होगा, यही छोड़कर जाना होगा जो भी देखा है
1: जी।
0: उनके साथ आप अच्छा एटीट्यूड कीजिए, अच्छा व्यवहार कीजिए, लेकिन घर जाकर नहीं लेना है, फिर आप पड़ जाओगे, क्या फायदा है।
1: बराबर।
0: फिर बस वो धीरे धीरे वहाँ पता लगा हमको, स्लम एरिया में स्कूल्स खोल रखे थे उन लोगों ने, फ्री ये शाला फ्री चला रखी थी स्लम एरिया के बच्चों के लिए। तो वहाँ उन लोगों ने, मैं गई देखने, कभी मैं स्लम एरिया में नहीं गई थी,
1: राइट,
0: लेकिन मतलब मेरे को दिक्कत भी लगती थी, मुंह बंद करके जाती थी कई बार, और कई बार बस कीचड़ नीचे भी होती थी, तो शूज पहन के साड़ी पहनना बंद कर दिया था, टाइट कपड़े पहनना शुरू कर दिया था, गिरे ना कहीं, और वो बिल्कुल ऐसी रेलिंग होती थी कि देखकर लगता था
1: कैसे रहते हैं
0: हम लोग इतने बड़े बड़ों में रह के, लगते हैं हमको ये परेशानी, हमको ये परेशानी, वो लोग कैसे रह रहे हैं। तो धीरे धीरे करके मतलब मैं पर्सनली उन लोगों से इतनी अटैच हो गई, उन लोगों ने फिर मेरे को निरीक्षण बना दिया।
1: अच्छा।
0: 35 शालाओं का निरीक्षण था, तो जो हम लोगों को, हम मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जाते थे, बस इसी तरह से धीरे धीरे करके
1: वो समाज कार्य बढ़ता गया आपका।
0: किशोरी वर्ग शुरू किया फिर हम लोगों ने, जैसे किशोरी बच्चों के लिए 8 वर्ष से और 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, जैसा कि आजकल माहौल चल रहा है तो उनको सेव करना, उनको गाइड करना है,
1: राइट,
0: तो वो भी
1: करते हैं।
0: तो बस सब काम होते थे घर के भी, और बहुत एक्टिव रहती थी, ऐसा नहीं था कि कोई काम छोड़ के जा रही हूँ, काफी सारा काम होता था।
1: बराबर।
0: और आके बस
1: और आप ज्यादा
0: सोते थे,
1: प्रफुल्लित
0: होता था कि हमने हमारे कुछ तो हुआ।
1: तो अभी अंत में आपकी एक सुंदर सी कविता वापस सुनते हैं और ये जो शो का अंत करते हैं, ठीक है?
0: ठीक ठीक।
1: आप कौन सी कविता पढ़ना चाहोगे?
0: आप बताओ।
1: जिंदगी के बारे में, अभी हम जिंदगी के बारे में इतने
0: जिंदगी
1: के बारे में सुनते हैं,
0: ये करने की छोटा सा है
1: जी,
0: चलेगा
1: या
0: जिंदगी है तो सब कुछ है, कहते हैं ना
1: जी,
0: जिंदगी, इसकी ये मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं, बहुत छोटी सी, शायद आपको पसंद आए
1: जी, बिल्कुल।
0: जिंदगी तेरे लिए मैं प्यार लाई हूँ, जिंदगी तेरे लिए मैं प्यार लाई हूँ, ये घड़ी, ये धूप, ये दिन, ये रात, कल भी आई थी,
1: आज भी आई है,
0: कल भी आई थी और आज भी आई है, किसी को ये सिंहासन देगी और किसी के लिए बेबसी देगी, ये सूरज जो सिर पे चढ़ा है शाम को पाँव में उतर जाएगा, इसी तरह ये सांस का राही क्या पता किस पाँव पर रुक जाएगा,
1: क्या बात,
0: इसी तरह ये सांस का राही क्या पता किस तरह किस पाँव पर रुक जाएगा, गीत गाओ स्नेह का संसार लाई, जिंदगी मैं तेरे लिए
1: प्यार लाई, क्या बात,
0: नई आशा, नए सपने, नए संकल्प, मैं बुलंदी का सघन विस्तार लाई, मैं बुलंदी का सघन विस्तार लाई हूँ, मुस्कराओ आज मैं उपहार लाई हूँ, जिंदगी तेरे लिए
1: मैं प्यार लाई हूँ, क्या बात है। कितना पॉजिटिव अप्रोच है टुवर्ड्स लाइफ, मतलब जिंदगी के ऊपर अपने बहुत अच्छा अच्छे से लिखा है, और आज हमारे आचार्य 90FM से आप जुड़े हैं, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप ऐसे ही लिखते रहिए, मिलते रहिए और हमें हमेशा कुछ ना कुछ देते रहिए, थैंक यू सो मच जी।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार।

0: नमस्ते दर्शकों, आज हम सेलिब्रिटी शो में हमने आमंत्रित किया है नीलम गोयल जी को। नीलम जी नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: आपका स्टूडियो में भी स्वागत है और हमारे आचार्य 90 FM पे स्वागत है और सेलिब्रिटी शो में भी आपका स्वागत है। नीलम जी गोयल एक स्नातक, आगरा यूनिवर्सिटी की स्नातक रही हैं और कुकिंग क्लासेस, लिखना पढ़ना, समाज सेवा, सोशल वर्क, इन स्लम एरिया इनका कार्य रहा है। काउंसलिंग फॉर कैंसर पेशेंट्स, लोगों से मिलना और मुक्त छंद की कविताएं लिखती है, कृष्ण के भजन गाती है और आखर मुक्ता साहित्यिक पत्रिका में स्वरचित कविताओं का उनका गीत का छपना हुआ है। कहे अनकहे शब्दों का कैनवास इस कहानी संग्रह में, स्वयं रचित कहानी मुट्ठी भर सपने का भी छपना हुआ है। साहित्यिक प्रतियोगिताओं में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित 21 सर्वश्रेष्ठ कहानियां पत्रिका को उन्होंने जीता है और पतंजलि योग पीठ से प्रमाणित योग शिक्षिका भी रह चुकी है। बहुत सारे ये सब आप वही पूछना चाहूंगी, इतना सारा आप व्यस्त रहती है, पूरा 24 घंटे भी आपको कम पढ़ते रहेंगे, तो ये सब आप मैनेज कैसे करती है वो शुरू में ही करना?
1: बस मेरे को ना कुछ है कि मुझे कुछ ना कुछ करते रहना है
0: जी।
1: और इन सब चीजों से मैं बचपन से थोड़ी प्रेरित रही हूँ, क्रिएटिव मैं शुरू से ही थी
0: जी।
1: और ये जो पढ़ने का शौक मुझे लगा वो मेरी मदर से लगा।
0: अच्छा।
1: क्योंकि वो उस समय भी ना ये कौन कौन सी पुस्तिकाएं होती थी, धर्मयोग और ये कादम्बिनी, इस तरह की मतलब हाई लेवल की बुक्स पढ़ती थी। वो 12th पास थी उस समय की, लेकिन कोई जॉब नहीं किया था। तो बस मुझे वो उनको पढ़ते देखती थी और धीरे धीरे धीरे धीरे मेरे को रीडिंग करने की जो मिल जाता था, धर्मयोग कोई भी पत्रिका अखबार मतलब जो भी मिल गया वो मुझे उसको पढ़ना है।
0: वाह, वेरी नाइस। आपके साहित्य के बारे में हमें बहुत कुछ जानना है, लेकिन आप कविताएं जैसे हमारी पहली मुलाकात में आप मैं जान गई थी, आप बहुत कथा सुंदर से प्रस्तुत करते हैं, कविताएं भी लिखती हैं, तो जाहिर सी बात है अभी आपने माँ का जिक्र किया तो हमारी सबकी शुरुआत तो माँ से ही होती है, तो माँ के ऊपर आपने जो कविता लिखी है वो हमें सुनाइए प्लीज।
1: सबका धन्यवाद, नमस्ते। माँ केवल एक शब्द ही नहीं है, माँ बल्कि असीम शक्ति, ममता और आस्था का स्वरूप है। जब जीवन में अंधेरा छा जाता है तो माँ का नाम ही एक दीपक बनकर हमारे जीवन में उजाला करता है और रास्ता दिखाता है। आज उसी जगत जननी शक्ति स्वरूपा माँ के चरणों में, श्री चरणों में अपनी भावनाओं का ये छोटा सा भजन अर्पित करने जा रही हूँ। श्रद्धा भक्ति के साथ आप सब जुड़िए। पधारो माँ पूजा को, पधारो

0: क्या बात है, वेरी नाइस. जय माता दी. मेरा मन तो गंगा मैया के यहाँ पहुंच गया वाराणसी में, क्योंकि कितनी सुंदर, मतलब हम वो गंगा मैया को माँ कहते, पुकार के बुलाते हैं, और जो गंगा आरती का जो विलोभनीय दृश्य हमें अभी आपकी ये कविता में, ये पद में साकार हुआ, वेरी नाइस, वेरी मतलब वेरी टचिंग. अभी शुरू करते हैं कि आपका जो साहित्य प्रवास है, आपने जैसे बोला कि माँ बहुत बुक्स घर में रहते थे, तो आप पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए. मतलब जो शैक्षणिक, जो भी हमारा स्कूल का पढ़ना रहता है वो अलग, और आपको हिंदी में ज़्यादा रुचि है, तो आपने बीए इन हिंदी भी वैसे किया है, तो हिंदी के प्रति लगाव या फिर आस्था, आपको कौन से लेखक पसंद है हिंदी के, उसके बारे में और क्यों पसंद है?
1: मेरे को मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ बहुत पसंद हैं
0: जी.
1: और रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानियाँ बहुत, क्योंकि ये ना हमारे आसपास जो दिखता है उन सब से जुड़ी हुई है, सामाजिक समस्याएं,
0: हाँ.
1: स्त्री की समस्याएं, और समाज में जितनी भी व्यभिचार या जितना उत्पीड़न होता है, तो उन सब के ऊपर जो कहानियाँ लिखी है तो मुझे वो बहुत टचिंग
0: लगते
1: है, बहुत हाँ भावपूर्ण होती है, और मेरे को ना कहीं गहरे तक, ऐसे ही ना क्या हुआ कभी मैंने कहीं किसी से कुछ सुना, मेरी बड़ी दीदी है,
0: हाँ.
1: तो वो भी साहित्यिक में बहुत
0: अच्छा रुचि
1: पहुंची हुई है, बहुत ज्यादा हाँ.
0: अच्छा,
1: तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ मेरे को उसमें, मैं लिखने लगी, लिखते लिखते क्या हुआ,
0: हाँ.
1: जुहू में रहते थे हम लोग, तो वहाँ कृष्ण मंदिर था
0: जी,
1: वॉकिंग डिस्टेंस पे,
0: हाँ.
1: तो मैं सडनली, मैंने सोच लिया था कि मैं वहाँ जाके पहले दर्शन करके फिर ही नाश्ता किया करूंगी,
0: हाँ.
1: वहाँ जाके जब मैं पिन ड्रॉप साइलेंस होकर शांति के साथ जब बैठती थी ना,
0: हाँ.
1: तो बस भगवान का चेहरा देखती थी, तो उस चेहरे को देखकर मेरे को अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो मैं जब उनको देखती थी ना तो मेरे को रोना आता था.
0: अच्छा.
1: और रोते रोते धीरे धीरे धीरे धीरे वो भाव उत्पन्न होने लगा,
0: हाँ हाँ.
1: और पता लगा मैं तो वहाँ बैठे बैठे मोबाइल में ही उस समय जो आता था उस समय लिखती थी.
0: अच्छा.
1: फिर घर आकर जब उनको सुनाती थी तो सबको बहुत अच्छा लगता था, मुझे भी लगता था ये कैसे लिखा गया,
0: हाँ.
1: मतलब मुझे ऐसा लगता था जैसे किसी और ने लिखा है
0: जी.
1: फिर वो लिखने लगी, फिर धीरे धीरे मैं फिर उस स्पिरिचुअल ग्रुप से जुड़ी.
0: अच्छा.
1: फेसबुक पर अब उसमें जो था मैं अपनी ये रचनाएं डालने लगी, तो मोस्टली मैं तब कृष्णा के लिए ही लिखती थी.
0: अच्छा.
1: लिखते लिखते फिर धीरे धीरे कुछ और भी भाव होने लगा, जैसे मैं कभी गार्डन में गई,
0: हाँ.
1: तो दो तीन लेडीज जैसे बैठी हुई थी वहाँ,
0: हाँ.
1: तो वो बहुत परेशान, उन्होंने अपनी कुछ स्टोरी बताई,
0: हाँ.
1: तो मतलब मैं भी सेंट्री हो जाती थी कुछ, मैं भी ना ऐसी हूँ कि जल्दी मेरे भाव को छू जाती है किसी की बात में. तो उन्होंने जब वो सुनाती थी तो मैं, मुझे लगता था कि मुझे इनके लिए कुछ लिखना चाहिए, तो मैं उसी के ऊपर अपने शब्दों में स्टोरी लिखती थी, और वो जो स्टोरी सबको सुनाती थी ना तो सबको अच्छी लगती थी,
0: हाँ.
1: बस मेरा इंटरेस्ट वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, फिर मैं साहित्यिक ग्रुप से जुड़ी, उसमें अपना आंगना करके मेरा साहित्यिक ग्रुप है.
0: अच्छा.
1: उसमें हम लोग सीखने सिखाने का रखते हैं, जैसे कि दोहा है, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी उसमें, फिर जैसे दोहा है, छंद है, मुक्तक है, कविता तो मैं छंद मुक्ति लिखती हूँ.
0: अच्छा.
1: बस इस तरह से मेरा धीरे धीरे लिखने का शौक बढ़ता चला गया
0: जी. आपसे ऐसी बातचीत हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. आप सुनते रहिएगा आचार्य 90 FM, और आज हमारे सेलिब्रिटी शो में हमारे साथ जुड़ी है नीलम गोयल जी, जो हिंदी की साहित्यिक है, हिंदी की स्नातक है, और आप सुनते रहिएगा आचार्य 90 FM ओनली.

0: ब्रेक के बाद आप सभी से जुड़ रहे हैं सेलिब्रिटी शो में। हमारे साथ आज की सेलिब्रिटी है नीलम गोयल मैडम, और जो हमें बहुत कुछ आज कथाएं सुनवाने वाली है, कविताएं सुनवाने वाली है। मैडम आप मतलब हम सब लेडीज हैं, तो हमारी हमें डेली परेशानियां होती है, घर का भी देखना पड़ता है, और जो नौकरी व्यवसाय कर रहे हैं वो भी वहाँ पे मतलब बच्चों का देखना, घर का देखना और ऑफिस का भी काम देखना, दोनों स्तर पर हम लोग काम करते हैं, लेकिन बेटियों को वो स्थान नहीं मिलता जो आज के समाज में मिलना चाहिए, उसकी ज़रूरत है। और उसके ऊपर जो आप मैंने आपकी सुनी है वो कविता मुझे बहुत पसंद है, तो मैं चाहती हूँ हमारे आचार्य 90 FM के दर्शकों को भी वो सुनवाएं। तो ज़रूर आपने वो आप बेटी के दर्द दुख को समझती है और उसके बारे में आपने लिखा है, तो वो ज़रूर हमें सुनवाइए।
1: सच बात है कि हमारे समाज में आज भी बेटियां बहुत कुछ आगे कर रही हैं
0: जी,
1: लेकिन ना फिर भी कहीं ना कहीं उनको उनका दमन होता है
0: जी,
1: कहीं ना कहीं उनको रोका जाता है और वो अपनी इच्छाओं से हर कुछ नहीं कर पाती हैं
0: जी।
1: तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बेटी केवल एक शब्द नहीं है,
0: हाँ।
1: ये एक एहसास है और एक ऐसा प्यारा रिश्ता है जो जन्म से पहले ही दिलों से जुड़ जाता है। आज मैं उसी अनमोल रिश्ते बेटी पर अपनी भावनाएं प्रस्तुत करती हूँ। बेटी ईश्वर की सबसे सुंदर रचना, जिसका जिसकी हंसी से घर आंगन में बसंत उतर आता है।
0: क्या बात,
1: उसकी हंसी में ही संसार की रौनक बसती है और जिसकी आंखों में भविष्य के अनगिनत सपनों की किरणें झिलमिलाती हैं। वो केवल किसी घर की लाडली ही नहीं है केवल, बल्कि हर समाज की वो आत्मा है, हर संस्कृति की पहचान है। बेटी के रूप में ही संवेदना जन्म लेती है और ममता अपना अर्थ पाती है और भविष्य अपनी दिशा।
0: क्या
1: आज बेटी दिवस पर हमें ये स्मरण करना है कि बेटी का सम्मान केवल एक दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि जीवन भर निभाया जाने वाला वो संस्कार है। हर बेटी को पढ़ने का, लिखने का, अपनी इच्छा से उड़ने का, स्वयं को पहचानने का अधिकार है
0: जी।
1: क्योंकि जब एक बेटी आगे बढ़ती है तो एक पूरा युग प्रकाशमान होता है
0: जी, बिल्कुल।
1: आज की बेटी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, विज्ञान में, साहित्य में, खेल में, राजनीति में, पाक कला में, मतलब कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जहाँ वो पहुंची नहीं है
0: जी।
1: हर जगह उसने अपनी पहचान बनाई है, की उड़ान आसमानों को छू रही है, परंतु विडम्बना ये है कि कुछ स्थानों पर आज भी बेटी के साथ भेदभाव, अत्याचार और शोषण का सामना उसको करना ही पड़ता है
0: जी।
1: ये सब हमें झकझोरता है, मन को परेशान कर देता है और सोचने के लिए विवश करता है और हमें सजग भी करता है
0: जी।
1: कि कोई भी बेटी अब भय और अन्याय की छाया में ना रहे, बेटी का सम्मान, सुरक्षा, उसकी देखभाल, स्वावलंबन और हमारा नैतिक, सामाजिक, मानवीय दायित्व तो है कि बेटी आस्था भी है, प्रेरणा भी है, उससे ही धरती की मुस्कान जीवित है। इसलिए बेटी केवल उत्सव नहीं, एक चेतना है, एक संकल्प है। बेटी पर कुछ पंक्तियां लिखने का प्रयास किया है जो आपसे साझा करती हूँ। नन्ही सी हंसी में उजियारा बसे, हर सपने में उसका तारा बसे, न रोको उड़ाने, न रोको उड़ाने ये फलक छूले, न रोको उड़ाने ये फलक छूले, हर बेटी में ही तो सारा जहां बसे। बेटी मुस्कान है, बेटी अरमान है, जीवन की हर राह में वरदान है। आओ प्रण करें आज हम सभी, हर बालिका का सम्मान हमारा मान।
0: वाह, वेरी नाइस। अभी ये कविता है तो हम सुन रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप कथाएं भी लिखती हैं, तो आपकी कथा कहाँ और कथा और कविता कहाँ कहाँ प्रस्तुत करती हैं?
1: कथाएं और कविता, ये हमारा एक साहित्यिक ग्रुप है, उसमें हाँ। भेजती हूँ, कुछ किताबों में भी छपती हूँ। और मैं बहुत पहले जब मैं शादी होकर ही आई थी
0: हाँ।
1: तो वहाँ हम लोग होली का
0: त्योहार मनाते
1: थे
0: जी।
1: होली के बाद हमारे यहाँ 8 दिन तक ये लेडीज को बुलाना और
0: अच्छा।
1: खिलाना उत्सव मनाते थे, जिसको जो रुचि होती थी वो आपस में
0: हाँ।
1: शेयर करता था
0: हाँ।
1: तो इसी तरह से एक बार हमने बुलाया हुआ था सबको
0: हाँ।
1: और मैंने उन्हीं लेडीज के ऊपर एक कुछ छोटी सी कहानी
0: अच्छा
1: सुनाई और वो मेरी फिर अमर उजाला अखबार में
0: क्या बात
1: निकली, निकली तो फिर लोगों को पता लगा कि आप लिखती भी हो। क्या होता है ना, हम लिखते तो हैं लेकिन हमारी जो हमें उत्साह जो मिलता है वो और उसे मिलता है
0: जी,
1: जो पढ़ते हैं
0: हाँ।
1: जब हमारा उत्साह वर्धन होता है ना तो हमारा और इच्छा करती है हाँ शायद हमने कुछ अच्छा लिखा,
0: अच्छा
1: है,
0: लिखा है
1: कुछ और इससे भी अच्छा करके दे।
0: हाँ।
1: तो बस इसी तरह से धीरे धीरे धीरे धीरे मेरा लिखने का शौक बना। फिर और मैं जिस परिवार में से दूसरे परिवार में गई थी तो वहाँ का माहौल बिल्कुल अपोजिट था। तो वहाँ क्या होता था मतलब बहुत सिंपल बहुत अच्छे लोग हैं हमारे वो भी, लेकिन जो रहन सहन और जो ख्याल थे वो थोड़े अलग थे
0: जी।
1: मतलब इतना डिफरेंस था कि मेरे को वो लोग बिलायती बहू कहने लगे।
0: अच्छा।
1: पर एक समय ऐसा आया कि जब उन्होंने मेरे विचारों को सुनते थे मेरी सेवा को देखते थे तो धीरे धीरे मेरी उन्होंने लिखी हुई चीजें भी पढ़ते थे तो उनको उन्होंने फिर मतलब इतना मान सम्मान दिया कि जो मेरे बड़े लोग थे ना वो भी मेरे को ऐसे इनवाइट करते थे। मैं आपको वो किस्से में बता नहीं सकती कि वो सबके बीच में मेरे को किस तरह से खड़ा करके फिर मेरा बताते थे लोगों को।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो इस तरह से मेरा उत्साह वर्धन बहुत हुआ।
0: हाँ।
1: फिर मैंने साहित्यिक ग्रुप से जुड़ी तो उसमें लिखना शुरू किया। तो एक बार मैंने अपनी फ्रेंड के ऊपर संस्मरण लिखा। जब संस्मरण लिखा तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा और बोले ये तो मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैं पढ़ रही हूँ जैसे मैं सामने रेखा चित्र कर दिया हो ऐसा लग रहा है। तो उससे मैं बहुत प्रेरित हुई, उत्साह वर्धन हुआ। फिर उन्होंने एक बोले कि आपको कहानियां लिखनी है। मैंने ऐसी कहानियां नहीं लिखी है। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं आप कोशिश कीजिए आप लिखोगी आप लिख सकते हो
0: जी।
1: फिर मैंने दो कहानियां लिखी जिसमें से एक मेरी पास हुई और उन्होंने इस कहे अनकहे शब्दों के कैनवास में
0: अच्छा,
1: छपी
0: छपी।
1: इससे पहले क्या था ना छोटी छोटी बुक्स में छोटी छोटी उसमें निकल रही थी। एक जैसे ये है
0: आखर लुकता,
1: इसमें ये वर्ष में तीन निकलती थी।
0: अच्छा।
1: तो उसमें एक बार एक कविता निकली एक बार वो मेरी कहानी निकली।
0: अच्छा।
1: बस उससे मैं प्रेरित हुई और फिर मैंने लिखना शुरू किया
0: जी। अभी आप सामाजिक कार्य से भी जुड़े हैं उसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि आप कैंसर पेशेंट से ज्यादा मतलब उनसे ज्यादा मिलते हैं तो वो सामाजिक कार्य की रुचि आपने कैसे।
1: वो क्या था ना मेरे अंदर ना ये शुरू से सेवा का भाव था।
0: अच्छा।
1: जब मैंने ग्रेजुएशन करके चुकी तो एक महीने की छुट्टी थी
0: जी
1: और शायद मेरी को देखने वाले भी कुछ लोग आने वाले थे घर पर। तो उस बीच मैंने घर में कहा कि अभी तो मुझे शादी नहीं करनी है मेरे को जो है
0: पढ़ना है
1: लॉ करना है।
0: अच्छा।
1: मुझे आगे लॉ करना है। तो सब लोग बोले कि हाँ हाँ हो गया लॉ सब हो गया।
0: अच्छा।
1: बस अब क्या और क्या करना है। मैंने कहा मेरे को अच्छा स्कूल में टीचिंग करनी है।
0: अच्छा।
1: तो मैंने कहा ठीक है अब मैंने कहा विदाउट पे करनी है। तो
0: हाँ।
1: पास में एक स्कूल था छोटा सा और उसमें मैं जाने लगी।
0: वन मंथ
1: मैंने पढ़ाया। उसमें जो था एक बच्चा भी था वो धीरे धीरे मुझसे बहुत अटैच हो गया और बोला दीदी मैं आपसे और भी पढ़ना चाहता। मैंने कहा ठीक है तुम घर आ जाए करो।
0: अच्छा।
1: वो घर आने लगा मैंने उसको पढ़ाया।
0: हाँ।
1: उसका नंबर्स बहुत अच्छे आए।
0: हाँ।
1: कुछ नहीं वो हो गया मेरी शादी भी हो गई।
0: हाँ।
1: 25 साल बाद मेरे पास कॉल आती है उसकी।
0: अच्छा।
1: कि हेलो दीदी बोल रही है। मैंने कहा आप कौन बोल रहे हैं। मैं राजू बोल रहा हूँ। मैंने कौन राजू।
0: हाँ।
1: अरे दीदी आप भूल गई मैं वही राजू हूँ जिसको आपने घर पे बैठ के पढ़ाती थी।
0: अच्छा।
1: मैं इस पोस्ट पर हूँ आया है मैं नौकरी कर रहा हूँ बेंगलोर में।
0: क्या बात है
1: मतलब मैं वो पड़ी थी उस समय खुशी की वजह से।
0: हाँ।
1: तो ये मेरे को ना शुरू से था।
0: हाँ।
1: और इसके बाद फिर मेरी जब शादी हो गई तो एक पास में एक दूध जिनके यहाँ से आता था।
0: हाँ।
1: जैन मंदिर के बराबर में उनकी दूध।
0: हाँ।
1: का गाय वगैरह रखते थे।
0: हाँ।
1: तो वो जब लेते थे उनसे।
0: हाँ।
1: तो उसके एक भाई की ना डेथ हो गई थी उसके बच्चे थे।
0: हुँ।
1: तो वो परेशान थे और मुझे लगता था शायद अभी इनके घर वाले इन बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। तो मैंने उनको बोला मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं मेरे दो बच्चे हो चुके थे तब तक।
0: हाँ।
1: वो चले जाते हैं तुम इस बीच आ जाए करो मैं काम निपटा के 11 बजे करीब तुमको टाइम दूंगी।
0: अच्छा।
1: उसको इतना अच्छा पढ़ना आ गया।
0: हाँ।
1: कि उसने 12th पास किया।
0: क्या बात है।
1: और मतलब वो अपनी लाइफ में शादी वादी हो गई।
0: हाँ।
1: सेट हो गए। तो मुझे ये शुरू से कुछ आदत थी। अब यहाँ जब इन्होंने VRS लिया बैंक से स्टेट बैंक में मेरे हस्बैंड
0: हाँ, काम करते थे।
1: हाँ, तो जब उन्होंने VRS लिया तो सब लोग बोले कि अरे इतने वो ले रहे हैं और आप परेशान हो जाओगी।
0: हाँ।
1: घर में रह के क्या करोगी ये सारे दिन चाय बनवाएंगे और कॉफी बनवाएंगे सारे दिन तुम बिजी रहोगी परेशान हो जाओ। मैंने कहा जो होगा मैंने उनको समझा लिया, अगर हाँ, वो इसमें खुश है वीआरएस लेने में तो मुझे कोई हर्ज नहीं है
0: जी।
1: तो उन्होंने जब लिया तो यही लगा कि अब हम क्या करें क्योंकि टाइम एक्सेस में रहता था, सुबह सुबह टिफिन बना के नहीं देना और बच्चे भी बड़े हो गए, अपनी नौकरी में चले गए थे बच्चे। तो ये जो राम मंदिर का ये जब हुआ तो प्रसाद देने कुछ लोग घर पर आए, जब घर पर आए तो मैं हमने उनकी आरती उतारी।
0: अच्छा,
1: आरती उतारी और घर पे बिठा के उनको पानी वानी देने के लिए कहा, तो वो बहुत खुश हुए, आरएसएस के लोग थे
0: जी।
1: जब वो उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन बाद उनका कॉल आया कि ऐसे ऐसे आप लोग उससे जुड़िए। मैंने कहा ठीक है जुड़ेंगे, आप लोग पहले घर पर आओ। ये हमको पता था कि आरएसएस के लोगों को घर पे बुलाना चाहिए
0: जी।
1: तो वो लोग धीरे धीरे हमारे यहाँ आने लगे, कभी लंच पर कभी ब्रेकफास्ट पर
0: जी।
1: उन्होंने कहा, मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा मेरे को ना कुछ करने का मन करता है अभी, मैं ऐसा लगता है मैं अभी कुछ कर नहीं रही, बेकार हूँ। तो वो बोले ठीक है आप ऐसे ऐसे करके आइए हनुमान टेकड़ी पर साई पोड़ीवाड़ा में, वहाँ कैंसर पेशेंट्स का है और आप आइए, वहाँ आइए आपको अच्छा लगेगा, फिर आपको जिम्मेदारी देंगे।
0: ठीक है,
1: वहाँ गए। वहाँ गए तो क्या हुआ, वहाँ पेशेंट्स से मैं सबसे मिलने जाती थी, फिर उन्होंने एक रूम का मेरे को चार्ज दे दिया।
0: अच्छा,
1: कि आप इन लोगों से कॉन्टेक्ट में रहिए, देखिए इन पे क्या चीज़ है, इनको मेंटली सपोर्ट कीजिए। तो हम उनसे जाके कभी कभी उनको भजन सुनाती थी, कभी उनसे बात करती थी, क्योंकि क्या
0: बात करने से भी वो खुल जाते हैं, क्योंकि क्या है ना इमोशनली अच्छे रहते हैं।
1: क्या है ना, पेशेंट्स जो है मुझे लगता है कि वो
0: डिप्रेशन में
1: से नहीं जाता, वो सोच कर
0: चला जाता है जी।
1: फिर हम लोग की एंकोलॉजी को लेकर क्लासेस हुई, ट्रेनिंग हुई हमारी, तीन तीन दिन की क्लास चलती थी कि उनको साथ हम लोग को कैसे बिहेव करना है, कैसे नहीं करना है, क्या उनके सामने नहीं कहना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ दिन तो क्या हुआ, जब हम घर आते थे ना तो मैं सो नहीं पाती
0: उनका दुख दर्द देख
1: सो नहीं पाती थी। तो ये भी समझाते थे, उन लोगों ने समझाया देखो ऐसे सेवा नहीं हो सकती, आपको यही छोड़ जाना होगा, यही छोड़ कर जाना होगा जो भी देखा है, उनके साथ आप अच्छा एटीट्यूड कीजिए, अच्छा व्यवहार कीजिए, लेकिन घर जाकर नहीं लेना है, पर आप पड़ जाओगे क्या फायदा है।
0: बराबर।
1: फिर बस वो धीरे धीरे वहाँ पता लगा हमको स्लम एरिया में स्कूल्स खोल रखे थे उन लोगों ने, फ्री ये शाला फ्री चला रखी थी स्लम एरिया के बच्चों के लिए। तो वहाँ उन लोगों ने, मैं गई देखने, कभी मैं स्लम एरिया में नहीं गई थी
0: राइट,
1: लेकिन मतलब मेरे को दिक्कत भी लगती थी, मुंह बंद करके जाती थी कई बार, और कई बार बस कीचड़ नीचे भी होती थी, तो शूज पहन के साड़ी पहनना बंद कर दिया था, टाइट कपड़े पहनना

0: ही करते हैं।
1: तो बस घर के सब काम होते थे घर के भी, और बहुत एक्टिव रहती थी, ऐसा नहीं था कि कोई काम छोड़ के जा रही हूँ।
0: हाँ,
1: कभी सारा काम होता था
0: बराबर,
1: और आके बस
0: और आप ज्यादा
1: सोते थे।
0: हाँ,
1: मतलब प्रफुल्लित होता था कि हमने हमारे कुछ तो किया हुआ।
0: तो अभी अंत में आपकी एक सुंदर सी कविता वापस सुनते हैं और ये जो शो का अंत करते हैं। ठीक है,
1: ठीक जी।
0: आप कौन सा कविता, कौन सी कविता पढ़ना चाहोगे? जिंदगी के बारे में, अभी हम जिंदगी के बारे में इतने
1: जिंदगी
0: के बारे में सुनते हैं।
1: ये कर लेगी, छोटा सा है
0: जी,
1: चलेगा
0: चलेगा। या
1: जिंदगी, जिंदगी है तो सब कुछ है। हाँ, है ना
0: जी।
1: जिंदगी, इसकी ये मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं, बहुत छोटी सी, शायद आपको पसंद आए।
0: जी बिल्कुल।
1: जिंदगी तेरे लिए मैं प्यार लाई हूँ, जिंदगी तेरे लिए मैं प्यार लाई हूँ, ये घड़ी, ये धूप, ये दिन, ये रात, कल भी आई थी।
0: हाँ,
1: आज भी आई है। कल भी आई थी और आज भी आई है। किसी को ये सिंहासन देगी और किसी के लिए बेबसी देगी। ये सूरज जो सिर पे चढ़ा है, शाम को पाँव में उतर जाएगा। इसी तरह ये सांस का राही, क्या पता किस पाँव पर रुक जाएगा।
0: क्या बात।
1: इसी तरह ये सांस का राही, क्या पता किस तरह किस पाँव पर रुक जाएगा। गीत गाओ, गीत गाओ स्नेह का संसार लाई। जिंदगी मैं तेरे लिए
0: प्यार लाई हूँ। क्या बात।
1: नई आशा, नए सपने, नए संकल्प, मैं बुलंदी का सघन विस्तार लाई हूँ। मैं बुलंदी का सघन विस्तार लाई हूँ। मुस्कराओ, मुस्कराओ, आज मैं उपहार लाई हूँ। जिंदगी तेरे लिए
0: मैं प्यार लाई हूँ। क्या बात है। इतना पॉजिटिव अप्रोच है टुवर्ड्स लाइफ, मतलब जिंदगी के ऊपर अपने बहुत अच्छा, अच्छे से लिखा है। और आज हमारे आचार्य 90FM से आप जुड़े हैं, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप ऐसे ही लिखते रहिए, मिलते रहिए और हमें हमेशा कुछ ना कुछ देते रहिए। थैंक यू सो मच जी।